नमः, मधुपाय नमः, मनोन्मनाय नमः, मध्यस्थाय नमः, मधुमांसात्मने नमः, मनोवाचामगोचराय नमः, मण्डिताय नमः, मण्डनाकाराय नमः, मतिदाय नमः, मानपालकाय नमः, मनस्विने नमः, मनुरूपाय नमः, मन्त्रमूर्तये नमः, महाहनवे नमः, यशस्कराय नमः, यन्त्ररूपाय नमः, यमिमानसपावनाय नमः, यमान्तकर्णाय नमः, यामिने नमः, यजमानाय नमः, यदवे नमः, रमानाथार्चितपदाय नमः, रम्याय नमः, रतिविशारदाय नमः, रम्भाप्रीताय नमः, रसाय नमः, रात्रिचराय नमः, रावणपूजिताय नमः, रङ्गपादाय नमः, रन्तिदेवाय नमः, रविमण्डलमध्यगाय नमः, रतन्तरस्तुत्याय नमः, रक्तपाणाय

नमः लोलगण्डकाय नमः ललामसोमलूतादये नमः ललितापूजिताय नमः लवाय नमः वामनाय नमः वायुरूपाय नमः वराहमतनाय नमः वटवे नमः वाक्यजाताय नमः वराय नमः वार्याय नमः वरुणोढ्याय नमः वराश्रयाय नमः वपुषे नमः धराय नमः वर्षवराय नमः वरीयसे नमः वरदाय नमः वराय नमः वसुप्रदाय नमः वसुपतये नमः वन्दारुजनपालकाय नमः शान्ताय नमः शमपराय नमः शास्त्रे नमः शमनान्तकराय नमः शठाय नमः शङ्खहस्ताय नमः शत्रुहन्त्रे नमः शमिताखिलदुष्कृताय नमः शरहस्ताय नमः शतावृत्ताय नमः शतक्रतुवरप्रदाय नमः शम्भवे नमः शम्याकपुष्पार्च्याय नमः शङ्कराय नमः शतरुद्रगाय नमः शम्याकराय नमः शान्तमनसे नमः शान्ताय नमः शशिकलाधराय नमः षडाननगुरवे नमः षण्डाय नमः षट्कर्मनिरताय नमः शगवे नमः षड्जातिरसिकाय नमः षष्ठाय नमः षष्टिप्रीताय नमः षडङ्गवते नमः षडूर्मिरहिताय नमः षष्ट्याय नमः षिड्गाय नमः षाड्गुण्यदायकाय नमः सत्यप्रियाय नमः सत्यधाम्ने नमः संसाररहिताय नमः समाय नमः सख्यै नमः सन्धानकुशलाय नमः सर्वसम्पत्प्रदायकाय नमः सगराय नमः सागरान्तस्थाय नमः सत्राशाय नमः शरणाय नमः सहाय नमः साम्बाय नमः सनातनाय नमः साधवे नमः सारासारविशारदाय नमः सामगानप्रियाय नमः साराय नमः सरस्वत्यासुपूजिताय नमः हतारातये नमः हंसगतये नमः हाहाहूहू स्तुतिप्रियाय नमः हरिकेशाय नमः हरिद्राङ्गाय नमः हरिण्मणिसरोहठाय नमः हरिपूज्याय नमः हराय नमः हार्याय नमः हरिणाङ्कशिखण्डाय नमः हाहाकारादिरहिताय नमः हनुनासाय नमः अहुङ्कृत्याय नमः लालाननाय नमः लतासोमाय नमः लक्ष्मीकान्तवरप्रदाय नमः लम्बोदरगुरवे नमः लभ्याय नमः लवलीशाय नमः ललायगाय नमः क्षयद्वीराय नमः क्षमायुक्ताय नमः क्षयादिरहिताय नमः क्षमिने नमः क्षत्रियान्तकराय नमः क्षान्ताय नमः क्षात्रधर्मप्रवर्तकाय नमः क्षयिष्णुवर्धनाय नमः क्षान्ताय नमः क्षपणाथकलाधराय नमः क्षपादिपूजनप्रीताय नमः क्षपणान्ताय नमः क्षराक्षराय नमः रुद्राय नमः मन्यवे नमः सुधन्वने नमः बाहुमते नमः परमेश्वराय नमः स्विषवे नमः स्विष्टकृते नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirinyana Sambandha Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge ek diggaj dakshin bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani, jinka naam Thirinyana Sambandha hai. चोल प्रदेश के सीरकाड़ी धाम में शिवपाद हृदय नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। इनके यहाँ तिरुज्ञान संबंधर का जन्म हुआ। बालक अभी 3 वर्ष का ही था कि मंदिर के सरोवर के पास खड़े इन्हें तीनों लोगों की अधीश्वरी उमा देवी ने स्वर्ण की कटोरी में अपना स्तन्य रूपी ज्ञानामृत पिलाया था। उस समय इनके पिता सरोवर में स्नान कर रहे थे। बालक के मुंह पर दूध के छींटे देखकर पिता ने पूछा, बच तुझे दूध किसने दिया? वेदों के लिए अज्ञात उस परम तत्व की ओर अपनी नन्ही उंगली से संकेत करते हुए बालक संबंधर ने कहा, देखिए उन्होंने दिया। फिर बालक ने काव्यमय तमिल में पद सुनाया, तोरुडई सेवी, कानों में आभूषण धारण करने वाला, वृषभ के वाहन को धारक के रूप में धारण करने वाला, अपने विशाल मस्तक पर द्वितीय के चंद्र को धारण करने वाला, अपने अंगों में श्मशान भूमि की भस्म को लगाने वाला ही मेरा चित्त चोर है। 5 वर्ष की अवस्था में अपने यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर उपदेश देने के लिए आए आचार्यों के वेद वेदांत विषयक संशयों का निवारण करके उन्होंने सबको चकित कर दिया। ऐसे अद्भुत बालक को पिता अपने कंधे पर लेकर प्रमुख मंदिरों के दर्शन के लिए जाते थे, जहां संबंधर भगवान की स्तुति में सुंदर पदों का गायन करते थे। संबंधर इतने छोटे थे कि पैदल चलना संभव न था। देवी उमा ने उन्हें बाल्यावस्था में दूध पिलाया था, इसलिए भगवान शिव ने इन्हें अपना पुत्र मानकर सवारी के लिए मोतियों की पालकी, पहनने के लिए मोतियों का हार और विश्राम के लिए मुक्ता मंडप आदि प्रदान किया। एक बार की बात है, तिरुनीलकंठ याल पानर नामक शैव संत इन्हें मिलने आए। वे अपेक्षाकृत निम्न जाति के थे। संबंधर उनके याल मतलब वीणा जैसा वाद्य यंत्र वादन से इतने प्रभावित हुए कि याल पानर को अपने पास बिठा लिया और पद गाते समय याल बजाने का अधिकार दे दिया। यह दिखाता है कि तिरुज्ञान संबंधर ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। तिरुमरगल नामक गांव में कोई युवती अपनी पति के साथ प्रवास कर रही थी। रात के समय सर्पदंश से पति की मृत्यु हो गई। उसके शोक में व्याकुल युवती ने हृदय पूर्वक रोने लगी। उनके रोदन का स्वर सुनकर संबंधर ने तिरुमरगल के अधीश शिव की स्तुति की और पद गाने लगे। प्रभु कृपा थे मृतक युवक जीवित हो उठा। इस भांति संबंधर ने उस युवती का सुहाग उसे पुनः प्राप्त करवा दिया। भक्तिगान करते हुए संबंधर और याल पानर तिरुवेरुकत्तम पुलियूर पहुंचे। संयोगवश यही याल पानर का गांव था। यहाँ के एक मंदिर में जब संबंधर पद गा रहे थे तो गीत के बल कठिन होने के कारण याल पानर उन्हें अपने संगीत में बांध नहीं पाए। वे बड़े दुखित हुए और अपनी याल को नष्ट करने लगे। संबंधर ने उन्हें सांत्वना दी और ऐसा करने से रोक लिया। इसके बाद याल पानर भगवान के अनुग्रह से इतने अच्छे से याल बजाते थे कि लोगों को लगता था कि ये तो भगवान के ही कोई भक्त होंगे या उनके गण होंगे जो ये याल पान इतने अच्छे से बजाते हैं। सीरकाड़ी में रहते समय संबंधर की भेंट तिरुनामकरसर संत से हुई। वे आयु में उनसे काफी बड़े थे। दोनों में इतना स्नेह हो गया था कि उसके बाद दोनों साथ साथ ही यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और विभिन्न मंत्रों में पदों का गायन भी साथ साथ करने लगे। अनेक मंदिरों में घूमते हुए संबंधर और तिरुनामकरसर वेदारण्यम पहुंचे। तिरुज्ञान संबंधर ने तिरुनामकरसर को अपर का पदवी दिया, अपर यानी कि पिता। वेदारण्यम पहुंच के वहां मंदिर का मुख्य द्वार बंद था। तिरुनामकरसर ने अपने भक्तिपूर्ण पदों के प्रभाव से बड़े बड़े कपाटों को स्वतः ही खोल दिया। जब दोनों संत वेदारण्यम में प्रवास कर रहे थे तो जैन धर्म से प्रभावित पांडिदेश के दूत वहां पहुंचे। उन्होंने संबंधर से प्रार्थना की कि वे शैव धर्म को पुनः स्थापना के लिए पांडिदेश वापस चलें। तिरुज्ञान समुद्र यह नहीं चाहते थे कि ऐसे कलहपूर्ण वातावरण में समुद्र पांडी क्षेत्र में जाएं, परंतु समुद्र ने यह कहकर संतुष्ट किया कि भगवान के भक्तों को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और वे पांडी राजधानी मदुरई पहुंचे। अन्य धर्म में विश्वास रखने वाला राजा भयंकर जलन के रोग से पीड़ित था। उस धर्म के धुरंधर वैद्य राजा के रोग शमन का प्रयास करके हार चुके थे। उन्होंने अपनी असमर्थता बता दी। इसी ऐसी स्थिति में शिकारी के बालक शिव भक्त संबंदर ने शिवजी की स्तुति में भक्तिपूर्ण पद गाए और राजा को विभूत दिया। मंत्रयुक्त भस्म का लेपन करते ही राजा का कष्ट कम हो गया। शीघ्र ही वे रोग मुक्त हो गए। इसके बाद संबंदर ने वाद विवाद में शैव इतर मतवादियों को पराजित किया। मैलापुर जाकर कपालेश्वर मंदिर में पूपावई नामक युवती को, जिसका पहले देहांत हो चुका था, जीवित कर दिया। यह मंदिर समुद्र तट के निकट है। उचित समय में युवा संबंदर का विवाह निश्चित किया गया। भगवान और भक्तों के लिए प्रिय संबंदर के विवाह के अवसर पर दूर और निकट से शिव भक्त एकत्र हो गए। तिरुनल्लूर, जो आजकल अचलापुरम कहलाता है, में विवाह संपन्न होना था। जब अपनी पत्नी के साथ संबंदर अग्नि की परिक्रमा के लिए उद्युत हुए, तभी एक चमत्कार हुआ। सर्वत्र परम ज्योति का प्रकाश हुआ। वह एक अद्वितीय ज्योति थी, जिसमें विवाह के लिए समागत भक्तों और नववधु सहित संबंदर लीन हो गए। ऐसा माना जाता है कि शिव की अद्भुत ज्योति में संबंदर, नववधु और सारे भक्तगण एकत्र हो गए और शिव के समीप पहुंचकर उनके शिव गण बन गए। वे आज भी कैलाश में हैं, ऐसा माना जाता है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवर भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्र मथाश शिष्यं श्री शंकराचार्य मथाश पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति शांति।

चंद्रशेखर रक्ष माम, चंद्रशेखर रक्ष माम। ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित तथा दैया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत सायंकालीन ये प्रवचन का कार्यक्रम कल 16 तारीख से शुरू हुआ और ये 29 तारीख तक चलेगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर ये प्रवचन माला चिंतन माला 3 वर्ष पहले आरंभ हुई थी। 100 श्लोक का यह शिवानंद लहरी स्तोत्र है। गत वर्ष तक के चिंतन के क्रम में 66 श्लोक तक का चिंतन किया था और उसी के बाद के श्लोकों पर विचार आरंभ किया। कल 2 श्लोकों पर विचार हुआ, आज 69वां श्लोक 69 इस पर हम विचार करेंगे कि शंकराचार्य जी भगवान शिव जी से कौन सा भाव व्यक्त करते हैं, किस प्रकार का भाव अपने व्यक्त करते हैं। हमने कल कहा था कि स्तुति प्रार्थना भाव प्रदान होता है, प्रार्थना भावना से की जाती है, शब्द और भावना, तो भावना की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होता है। महात्मा लोग कहते हैं शब्द तो साधारण व्यक्ति भी सुन लेता है, तो साधारण व्यक्ति और परमात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा भावना को भी सुनता है, निःशब्द भावना को भी सुनने की क्षमता परमात्मा में है। तो ये श्लोक के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी किस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं अभ्यास करें। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव, अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव, अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्।

0: త్రం అరహసి రహసి స్వతంత్ర బుద్ధ్యా వరివసితుం సులభః ప్రసన్నమూర్తి అగణిత ఫలదాయక ప్రభుర్మే జగదధికోరిదిరాజశేఖరోస్తి అరహసి రహసి స్వతంత్ర బుద్ధ్యా వరివసితుం సులభ ప్రసన్నమూర్తి అగణిత ఫలదాయక ప్రభుర్మే జగదధికోరిది రాజశేఖరోస్తి అరహసి రహసి స్వతంత్ర బుద్ధ్యా. భగవాన్ శంకరాచార్యజీ, ఆదిగురు భగవాన్ శంకరాచార్యజీ, భగవాన్ శివ సే కహతే హై కి మహారాజ్ ఆప్ ముజే క్యూ నహీ స్వీకార్ కర్తే హో, మేరా తిరస్కార్ ఆప్ క్యూ కర్ రహే, మేరే ముజే క్యూ నహీ స్వీకార్ కర్తే. జహాన్ తక్ హై కి మే అప్నే ఆప్ కో అచ్చా మాన్తా హూ. హర్ వ్యక్తి अपना मूल्यांकन अपने आप करे वो गलत है. व्यक्ति के मूल्यांकन कोई दूसरा करे तो वो सही होता है. अपने आप को महान व्यक्ति तो हर व्यक्ति कहेगा, दूसरा व्यक्ति तुम्हें महान कहता है कि नहीं इस पर निर्भर करता है तुम्हारी महानता में. अपने आप को महानता तो हर व्यक्ति कहेगा. मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मुझ में बहुत सी कमी कमजोरियां हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा तिरस्कार करने योग्य तो नहीं हूं. मुझे लगता है कि आपके अनुग्रह का पात्र मैं बन सकता हूं, लेकिन आज तक आपके अनुग्रह का पात्र क्यों नहीं बना? तीन चार चीज को यहां प्रस्तुत किया है. जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम, ये चार चीज है. जहां तक कि मुझमें ये चार भाव नहीं है, जड़त भाव भी नहीं, मैं इंसान हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जीवंत हूं, मैं जड़ नहीं हूं. और ये मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं कि मैं बिल्कुल ही जड़ नहीं हूं. जड़ हो सकता हूं, जड़ भी हो सकता हूं, लेकिन इतनी मात्रा से आप मुझे परित्याग कर दें, स्वीकार न करें, तिरस्कार करें, ये गलत है. और मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंसान हूं, पशु तो नहीं हूं. शायद विषयों के प्रति आसक्त होने के कारण या अपने ही कर्म बंधन से बंधे हुए के कारण कुछ पशु भाव मुझमे भी हो सकते हैं. पशुता, सर्वथा पशुता नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता हूं. मुझमें कुछ बंधन है और शायद उन्हीं बंधनों के चलते मैं मुझ में पशुता हो सकती है, लेकिन इतनी मात्र से आपके द्वारा मैं सर्वथा तिरस्कृत हूं, आप मुझे सर्वथा तिरस्कार कर दें, ये बात तो नहीं जचती है. कलंकिता तीसरा भाव है. जहां तक ख्याल है कि मुझे कि जीवन में मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया। कहने के लिए तो हर इंसान ये कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम करते हुए भी वो यही कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि अपने कर्मों का मूल्यांकन जो है वो अपनी वासना से प्रेरित होकर करता है। हम कभी किसी को कहते हैं, व्यापारियों को कहते हैं कि तुम ईमानदारी से व्यापार करो, तो व्यापारी जवाब देते हैं, महाराज हम बड़े ईमानदारी से व्यापार करते हैं, और सारी दुनिया ही जानती है कि व्यापारी कितनी ईमानदारी से व्यापार करते हैं। हर व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे तो समाज में कोई मिलावट नहीं हो सकती है। लेकिन आज समाज में कोई सामान खरीदने जाओ तो हर सामान में मिलावट मिलता है। शुद्ध वस्तु मिलना तो आजकल असंभव हो गया। और हर व्यापारी को कहो कि ईमानदारी से व्यापारी क्या करो, बोले महाराज हम बड़े ईमानदारी से व्यापार करते हैं। और उसी के सामने कहा कि ये देखो तुम्हारी ईमानदारी, इसमें ये मिलावट की है, ये गड़बड़ी किया है। तो बड़ी शालीनता से, मधुर भाषा से, बड़े शिष्ट भाषा से जवाब देता है, महाराज थोड़ा बहुत तो इस जमाने में करना ही पड़ता है। बड़ी शालीनता से जवाब देता है, विनम्रता से जवाब देता है। ये थोड़े बहुत नीचे ऊपर न करो, इधर उधर न करो तो महाराज चलेगा ही नहीं जमाना में। आज के जमाने में ये सब करना ही पड़ता है। अपने कर्म को इस तरह वेरिफिकेशन कर रहा है, बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है कि मैं शुद्ध ईमानदारी से काम कर रहा हूं, जो हेर फेर हुई नीचे ऊपर हुई है वो तो अनिवार्य है, बाध्यता है, समसापेक्ष है, तो कैसे मूल्यांकन होगा। और हर व्यक्ति स्वयं गलत काम करते हुए भी उद्घोष नहीं कर सकता, सार्वजनिक नहीं कर सकता, घोषणा नहीं कर सकता कि मैं गलत काम करने वाला व्यक्ति हूं, कर सकता है? ऐसा मिला है आपको समाज में आज तक कोई जो गलत काम करने के बाद स्वयं उसने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की हो, ये समाज के लोगों सुन लो, देख लो, मैंने ये अपराध की है, ऐसा कहने वाला कहीं मिला है आपको? कलंकिता। इसलिए कहते हैं कि करना पड़ता है। हमें जवाब देते हैं, महाराज गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत तो नीचे ऊपर होती है, यानी गृहस्थ आश्रम में गलत काम चल जाता है। नहीं, क्योंकि हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में ये सब चल जाता है। अब आश्चर्य की बात यह है, हम गिरस्त होकर ये सब गलत काम कर लें तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप साधु होकर गलत काम करो ये अपराध है। ये कहते हैं कि नहीं बोलो हैं? यही कहते हैं कि नहीं? पब्लिक होकर गलत काम करे ये तो ठीक है, ये हजम हो जाता है समाज को, लेकिन पुलिस होकर गलत काम करे समाज को हजम होता है? अब जबकि साधु ये कहे तुम गृहस्थ हो, तुम गलत काम करो तो तुम्हारे समाज में चलता है, तो तुम्हारी रोटी खाकर हम भी गलत काम करें तो वो क्यों नहीं चलता है? है? चलना चाहिए ना, उसको भी चला लो भाई। दाल रोटी तो तुम ही खिला रहे हो। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ईमानदारी से, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि मुझ में कोई कलंक नहीं, कोई गलती नहीं है। जहां तक ख्याल है मैं अपनी मूल्यांकन में खुद करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की। आप भी ये कहोगे कि नहीं, बोलो, आप भी यही कहोगे कि नहीं? लेकिन जब गलती की है कि नहीं अनुसंधान करने लगेंगे तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, गलती के बाद गलती सामने जब आता रहेगा तो कहोगे ये तुमने गलती की है, यहां तुमने गलती की है। तो तुम जवाब क्या दोगे? महाराज इस संसार में तो ऐसा होता ही रहता है। तो अपने बचाव में तुम ये बात कहोगे कि नहीं, बोलो? हम कहते हैं कि नहीं अपने बचाव में ये शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं? महाराज ये तो होता ही रहता है, जमाना ऐसा है, समाज ऐसा है, थोड़ी बहुत नीचे ऊपर न करो, हेर फेर न करो तो ये समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव। दो संबोधन है शिव जी के लिए, शंकराचार्य जी दो संबोधन कर रहे हैं, एक देवा ये संबोधन कर रहे हैं। हे देवा, मई मुझ में जड़ता नास्ति, पशुता नास्ति, कलंकिता नास्ति, कुटिलचारत्वं च नास्ति। तब मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हो? और यदि अस्ति, हे राजमौले, ये संबोधन है राजमौले, हे राजमौले, यदि अस्ति आपके दृष्टि से मुझ में ये दोष यदि हैं, हालांकि मेरे दृष्टि से मुझ में ये दोष नहीं है, मैंने भूमिका में कह दिया ना, हर व्यक्ति अपने गलती को नहीं देखता है, दूसरे को गलती को जल्दी देखता है, अपने गलती को नहीं देखता है, ये जीव का स्वभाव है। आपके दृष्टि से यदि मुझ में ये दोष हैं भी तो, हैं भी तो, ध्यान देना, क्योंकि जड़ पदार्थों के सेवन करते करते और जड़ वस्तुओं के साथ आत्म तादात्म्य करने के कारण आध्यात्मिक जड़ पदार्थों के साथ संबंध से मुझ में जड़ता आपके दृष्टि से हो सकती है। आप नहीं मानोगे कि मैं जड़ हूं। आप लोग यहां बैठे हो, आप अपने को जड़ मानते हो कुर्सी की तरह? बोलो, है? सही रूप में विचार करें, आपका शरीर और कुर्सी में अंतर नहीं है। सही रूप में विचार करें तो आपका ये जो कुर्सी, यदि 100% जड़ है तो आपका शरीर भी 100% क्या है? जड़ है। लेकिन कुर्सी को 100% जड़ आप मानने को तैयार है, लेकिन अपने शरीर को 100% जड़ मानने को तैयार है? बोलो, आप तैयार हो अपने शरीर को 100% कुर्सी की तरह जड़ है मानने को तैयार है? जबकि आपका शरीर 100% कुश्ती के तरह ही जड़ है। चैतन्य के साथ तादात्म्य होने के कारण आप अपने आप को, अपने शरीर को जड़ नहीं मान सकते, लेकिन कोई विचार करने वाला व्यक्ति, तत्व विचार करने वाला व्यक्ति, विवेक करने वाला व्यक्ति जड़ और चैतन्य क्या है, क्या जड़ है, क्या चैतन्य है, ये विचार करने वाला व्यक्ति शरीर को कुर्सी की तरह 100% जड़ स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलो। अब भी करते हो विचार करने के समय में, तो अब भी यही कहोगे चैतन्य मैं हूं और शरीर मेरा, तो शरीर तो जड़ है। ऐसी भ्रांति क्यों हुई भाई? तादात्म्य के चलते। कुर्सी के साथ आपका तादात्म्यता नहीं है, चैतन्य की तादात्म्यता नहीं है, इसीलिए कुर्सी को तो तुम 100% जड़ मानने को तैयार हो, लेकिन शरीर के साथ चैतन्य का ऐसा तादात्म्य बन गया है, अन्यस्मि अन्य धर्मा धर्मी तादात्म्य हो गया है। चैतन्य का धर्म शरीर में और शरीर का धर्म चैतन्य में अन्योन्य आश्रय होने के कारण इस तरह भ्रांति हो सकती है। तो ये तो कोई समझदार व्यक्ति विचार करेगा, तभी उसको दिखेगा कि जड़ता कितनी है और चेतनता कितनी है। पशुता भी है, हालांकि आप अपने आप को पशु मानने को तैयार नहीं हो। बोलो, आप लोग अपने आप को पशु मानने को तैयार हो? पशु मानने को तैयार हो? बोलो, पशु मानते हो कि इंसान मानते हो? लेकिन जब विचार करते हैं तुम अपने को भले इंसान मान लो, लेकिन जब तत्व विचार करते हैं तो तुम्हारे में इंसानियता कितनी है और पशुता कितनी है, स्पष्ट दिखेगा। अब साइब दर्शन में तो कहा गया है, पास बद्दो ही पशवा, पास से बधे हुए होने के कारण जीव मात्र पशु है। पास पंचविधा, आप पांच प्रकार के पासों से बधे हैं, और गीता में तो कह दिया है कर्मानुबंधी में मनुष्य लोग। इस संसार में हर मनुष्य उसके द्वारा किए गए कर्म से बांधा हुआ है, तो जो बांधा हुआ हो वो इंसान कैसे हो सकता है? बोलो, इंसान बांधा हुआ होता है? स्वतंत्र को इंसान कहेंगे, बंधे हुए को इंसान कहेंगे? बंधे हुए तो पशु कहेंगे। इसीलिए तुमने भगवान को पशुपति माना कि नहीं है? भगवान को पशुपति माना कि नहीं? वह पशुपति है तो पशु कौन है? बोलो, तुम खुद पशु हो कि नहीं? उसको तुमने पशुपति माना है तो तुम खुद पशु हो। तो विचार करने पर सिद्ध होता है कि मुझ में पशुता है, लेकिन विचार नहीं करें तो फिर हम पशु सिद्ध नहीं होते, हम तो अपने आप को इंसान बंधे हुए हैं फिर भी इंसान कहते जा रहे हैं। बंधे हुए हैं फिर भी क्या कह रहे हैं? कहने के लिए अपने आप को इंसान कह रहे हैं और बंधे हुए हैं, इसलिए विचार करने पर अपने आप में पशुता सिद्ध हुआ कि नहीं? बोलो, जड़ता पशुता कलंकिता, कलंकी माने जो शास्त्र ने करने से निषेध किया हुआ काम है, वह तुम यदि करते हो तो निषिद्ध कर्म करने वालों को कलंकी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि चोरी न करो, तुमने चोरी किया तो वो तुम्हारे मत्थे में कलंक लग गया कि नहीं है? शास्त्र ने कहा कि तुम अभक्षण भक्षण ना करो और तुमने कर ली तो कलंक लगा कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि ये कर्म ना करो फिर भी तुमने कर ली तो यही तो तुम्हारी कलंकता है। और वास्तव में विचार करें तो तुमने इतनी गलत काम कर रखी है, तुम निर्दोष कैसे सिद्ध होगे? इतनी गलत काम कर रखी है कि तुम निर्दोष तो सिद्ध नहीं हो सकते हो। इसीलिए कलंकिता कुटिलचारत्वम, करते कुछ हो, कहते कुछ हो, मन में कुछ और है, यही कुटिलता है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मन्यन्यत, इसी का नाम है कुटिलता। मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो और कर्म कुछ और कर रहे हो, इसी को कुटिलता बोलते हैं। यही दुरात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन में जो है वही वाणी में है और मन और वाणी में जो है वही व्यवहार में है, तो उसी को सरल व्यक्ति कहेंगे, उसी को सीधा व्यक्ति कहेंगे। और मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ है, तो उसको क्या कहेंगे? टेढ़ा व्यक्ति कहेंगे कि नहीं? वो व्यक्ति बड़ा टेढ़ा है, करता कुछ है, बोलता कुछ और है। व्यवहार में भी तो ये कहते हैं ना, उस टेढ़ेपने को ही कुटिलचारत्वम। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचारत्वम च नास्ति मयि देव, यदि अस्ति राजमौले। राजमौले संबोधन है, राजाओं का भी महाराज सिरमौर राजमौली, राजमुकुट। अस्ति यदि राजमौले, हे राजमौले, ये संबोधन हो। यदि कदाचित मुझ में जड़ता भी उद्ध हो, पशुता भी हो, कलंकिता भी हो, कुटिलचरता भी हो, तो भी आपके द्वारा तिरस्कार करने योग्य तो नहीं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन पुष्पदंस शिव महिम्न स्तोत्र प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: आपके यहां भी रहते होंगे, गांव में रहते ना, फिर बड़े बड़े महल बना लिए तो क्या? अगर भगवान का भजन नहीं किया तो कुछ भी नहीं है, और भगवान का भजन किया तो कुबेर भी बन जाओ तो भी अच्छा है। यहां निंदा से धन की निंदा नहीं है, निंदा का अर्थ है कि यदि आपने भगवान का भजन किया तो फिर आप कुबेर बन जाओ। कुबेर को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? क्योंकि कुबेर पैसे को रखते नहीं, देते हैं। जिसने मांगा उसको दे दिया, देवताओं ने मांगा देवताओं को दे दिया, अरे मनुष्यों ने मांगा मनुष्यों को दे दिया, राक्षसों ने मांगा राक्षसों को दे दिया, जिसने मांगा उन्हीं को ही दिया। अगर वो देते नहीं, रखते ही, तो उनमें लोभ आता, क्रोध आता, मोह आता, आसक्ति आती, फिर वो देवत्व को प्राप्त। देवत्व को प्राप्त इसलिए क्या है कि वो देने वाले हैं। किं वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर् देहेन गेहेन किम्, ज्ञात्वै तत्क्षण भंगुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरत। ते मन तू विचार कर ले, जिनके बारे में तू सोच रहा है वो तो क्षणिक हैं। ज्ञात्वै तत्क्षण क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर कुछ समय के लिए ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा आप गंगा जी में जाकर, गंगा जी गए, गंगा यमुना किसी पवित्र नदी में तो गए होंगे ना। जब आपने डुबकी लगाई नदी में, जिस पानी में आपने डुबकी लगाई है, क्या डुबकी लगाने के बाद, गोता लगाने के बाद बाहर जब निकले पानी वही था या दूसरा था? बस यही जीवन है, यही जीवन है। लगता तो ऐसा है कि वही पानी है, क्यों? क्योंकि अनवर्तता के कारण। उसकी जो निरंतरीयता है पानी की, वो टूट नहीं रही है, इसलिए हमें लगता है कि पानी वही है, लेकिन वो पानी तो जैसे ही आप नीचे गए बहकर के चला गया, ये तो दूसरा पानी है। बस यही जीवन है। ज्ञापय तत्क्षण भंगुरम सपदि रे त्याज्यम मनो दूर तरे, मेरे मन इसको क्षण भंगुर समझ करके दूसरे से ही छोड़ दे। भाई इसको छोड़े तो पकड़े क्या? स्वात्मार्थम गुरु वाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। अरे एकमात्र भजन कर किनका? पार्वती वल्लभ का। किनका भजन करें? भगवान शिव का। चंद्रोद

0: चित्त वृत्ति मचनाम अन्यस्तु किम कर्म भी। हा हा, कहां ध्यान करें हम? ध्यान का भी जगह बता दी भगवान शंकराचार्य ने, कहां ध्यान करें? चंद्रोद्भाषित शेखरे, जिन्होंने अपने शिखर पर चूड़ामणि के रूप में चंद्रमा को, भाई ये चंद्रमा को क्यों धारण किया? भगवान ने चंद्रमा को धारण क्यों किया? आप लोग कहेंगे भगवान भांग पीते हैं इसलिए, और नशा हो जाता है तो उसको शांत करने के लिए चंद्रमा को धारण किया। देखो हम आपको ईमानदारी से बताते हैं, चार वेद, छह शास्त्र, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत और जितने भी पुराण है, कहीं पर भी भगवान शंकर ने भांग पी ऐसा लिखा नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा। चार वेद, छह शास्त्र, छह शास्त्र तो उनके निर्गुण निराकार की व्याख्या करते हैं, चार वेद, छह शास्त्र, रामायण और महाभारत और अठारह पुराण, किसी में भी नहीं लिखा है कि भगवान शंकर ने भांग पी। ये तो लोक परंपरा चल पड़ी, जैसे बहुत सी परंपराएं गलत भी चल जाती है ना, अनावश्यक रूप से बहुत परंपराएं चलती हैं, ये भी एक परंपरा चल गई, भगवान शंकर ने भांग पी। पीते भंग प्याला, शिव पीते भंग प्याला बोलते ना मारुति में, ये परंपरा चल गई, भांग नहीं पी उन्होंने। चंद्रमा को धारण किया क्यों? बड़ा सुंदर उनका जीवन है, बड़ा सुंदर जीवन है, देखो उनका जीवन कितना सुंदर है। अगर आप लोक व्यवहार में आप उनको देखें तो उनके गले में क्या है? विष है, विष, गले में विष है, और सिर के ऊपर गंगा जी है, चंद्रमा है। ये जो चंद्रमा है आह्लादकता का प्रतीक है, किसका है? चंदन और चंद्र दोनों आह्लादकता है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, संसार में यदि शीतल है तो चंदन है, और चंदन से भी ज्यादा शीतल है तो चंद्रमा है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंद्र योर मध्ये शीतला साधु संगति। यदि और ठंडक चाहिए आपको, देखिए ठंडक चाहिए तो आप चंदन लगाइए, ज्यादा ठंडक चाहिए तो चंद्रमा को धारण कर लीजिए, इससे भी आपकी गर्मी नहीं शांत हुई, ज्यादा ठंड चाहिए तो साधु संगति कीजिए, साधु संगति से परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो चंद्रोद्भासित से करे, जिन्होंने आनंद आनंद स्वरूप जिनका है, जिन्होंने चंद्रमा को धारण कर रखा है, मानो आह्लादकता को जिन्होंने धारण कर रखा है, जिनको देखते ही हमारे मन में आह्लादकता आ जाती है। स्मर हरे, ये स्मर क्या है? स्मर कहते हैं कामदेव को, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया है, इच्छाएं है ही नहीं जिसकी। हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज एक बात कहते हैं, देखो आप विष्णु का भजन करोगे ना तो विष्णु के भजन से आपको धन नहीं मिलेगा, लक्ष्मी मिलने वाली नहीं है, तो लक्ष्मी तो शिव जी के भजन से ही मिलेगी। उन्होंने पूछा क्यों? कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्यारी वस्तु किसी को नहीं दिया करता, जिसको जो प्यारी है वो दूसरे को नहीं देता। अच्छा विष्णु को सबसे प्यारी क्या है? है ना, तो वो कैसे आपको दे देंगे? भागवत में तो लिख दिया, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये। हाँ देखो आपको मालूम है, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका धन हरण करता हूं। क्यों? ताकि उसको निर्धन समझ करके सब लोग छोड़ दें। और भगवान शंकर क्या कहते? भाई अपना ऐसा नहीं है तो हमारा क्या है? भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एव, दोनों है हमारे साथ, भजन करो आपको भोग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। अच्छा देवासुर है ना, देवासुर में जिन्होंने भी भगवान का भजन किया, चाहे देवताओं ने किया चाहे असुर ने किया, सारे ऐश्वर्य संपन्न थे, नरक में कोई नहीं गया। नमन्ति ऋषयो देवा, है ना। षडक्षर मंत्र में दूसरा मंत्र है न, नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसांगण नरा नमन्ति देवेशम नकाराय नमो नमः। अरे देव ऋषि गंधर्व सागर मनुष्य सभी तो आपका भजन करते हैं, लेकिन किसी भी भजन करने वाले का आप दुर्गति होने। अच्छा, भगवान कृष्ण ने तो भगवद गीता में कहा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात, कल्याण करने वाले की दुर्गति नहीं होती और जो मेरा भजन करता है उसकी। नमे भक्त, हाँ मालूम तो है, लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार बहुत बलवान है। देखो, रोज झाड़ू लगाओगे, रोज झाड़ू लगाओगे तो ही सफाई होगी। एक दिन के झाड़ू लगाने से सफाई होने वाली? आप सोचते हैं कि एक दिन कथा सुन ली अब तो हमें मालूम है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक सज्जन गए, कहने लगे, महाराज आपने तो सब कुछ पा लिया है, फिर आप क्यों रोज ये जप करते हैं, माँ माँ माँ माँ क्यों चिल्लाते रोज, जब आपको माँ के दर्शन हो गए। और इतना ही नहीं, माँ से ऊपर आप पहुंच गए, माँ का तो गला काट दिया था आपने, आप तो ब्रह्म रूप हो गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कैसा करो, एक लोटा लेके आओ पानी का। पानी का लोटा लाए, वो बोले इसको साफ करके लाओ। बढ़िया साफ करके, गंगा जी की मिट्टी से साफ करके वो ले आए, एक तरफ रखवा दिया। पांच दिन सात दिन आठ दिन बाद फिर आए, कहने लगे वो लोटा में पानी लेकर के आओ। वो लोटा लेके चला तो जैसे ही धोने लगा तो ठाकुर ने कहा कि क्या कर रहे हो? महाराज साफ कर रहा हूं। क्यों? उस दिन साफ नहीं किया था? नहीं, इसमें धूल जम गई। क्या हुआ इसमें? कहते पगले, हम भी इसलिए रोज रोज जप करते हैं कहीं धूल। हालांकि ठाकुर को धूल नहीं जमने वाली थी, लेकिन लोक शिक्षा के लिए महापुरुष ऐसा व्यवहार, लोक शिक्षा के लिए वो व्यवहार करते हैं। इसलिए प्रतिदिन जप करना चाहिए, प्रतिदिन सत्संग श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन साधु संगति करनी चाहिए, तब जाकर के ये भाव हमारे अंदर आता है कि कहीं धुल जाए। तो चंद्रोद्भाषित शेखरे स्मर हरे, गंगाधरे शंकरे। जो गंगा को धारण करने वाले हैं, ऐसे सबका कल्याण, सम कल्याणम करोतीति शंकरः, जो सबका कल्याण करने वाले हैं। सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे, नेत्रोत्थवैश्वानरे। सर्प का जिन्होंने आभूषण धारण कर रखा है, एक बार लक्ष्मी के मन में आया कि पार्वती को चिढ़ाते हैं, तो पार्वती के पास चली गई और जाकर के कहने लगी, कहां है वो सर्पों के राजा? पार्वती ने समझा ये टोंट कर रही है। उन्होंने कहा जाओ क्षीर सागर में मिलेंगे। अच्छा, क्षीर सागर में क्या है, किस पर सो रहे हैं? सांपों पर ही सो रहे ना। उन्होंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था? कहने लगी मैं पूछ रही थी पशुपति कहां है। उन्होंने कहा वृंदावन में मिलेंगे आपको, जाओ। अरे एक ने क्रोध का नाश करके अपने आभूषण बना लिया, तो एक ने उसकी सैया बना ली। सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे, नेत्रोत्थवैश्वानरे। जिनकी तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई, दंतीकृत, जिन्होंने हाथी के गज चरम को धारण कर रखा, सुंदरांबरधरे। एक बहुत बड़ा राक्षस था, गजासुर नाम था उसका। क्या नाम था? गजासुर नाम था, बहुत बड़ा राक्षस था। महाराज उसने तपस्या की, नहीं भयंकर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे वरदान मांगो। उन्होंने कहा मेरे को अमरता का वरदान चाहिए। देखो देवासुर में क्या है, देव ये कहता है कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, और असुर क्या कहता है, मुझे अमरता चाहिए। हालांकि मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, सब अमरता ही चाहते हैं, लेकिन अमरता के वास्तविक स्वरूप को कोई पहचानता, कोई नहीं पहचानता। उन्होंने कहा यह तो संभव नहीं है, अपार शक्ति दे दी ब्रह्मा जी ने उनको, अपार शक्ति। अब महाराज वो सबको परेशान करने लग गए, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं सूझा, सबके सब भगवान शंकर के पास गए और शंकर भगवान ने उसको वध किया, मार दिया और उसकी जो चरम थी वो अपने लपेट ली। भाई दिगंबर तो थे ही, उन्होंने सोचा चलो कपड़ा पहनने काम आ जाएगा है? तो दंती पकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक के सारे हरे, त्रैलोक के सार। अच्छा त्रैलोक का सार क्या है, देखो ये भी एक गजब की बात है। जब आप स्वर्ण भस्म बनाते तो स्वर्ण की राख ही उसका सार हो जाती है ना, स्वर्ण की राख। हीरा भस्म बनाएंगे तो कोई भी चीज अग्नि में डाल दोगे वो भस्म हो जाएगी, तो उसका सार रूप है वो। ऐसे ही सारा संसार कहां लय को प्राप्त होता है, संसार को भस्म करने वाले कौन हैं, कौन है, शिव जी। तो त्रैलोक के सार, तीनों लोकों के एकमात्र सार है भगवान शिव। अच्छा ये तो भगवान शंकर ने तीनों लोकों का भस्म कर दिया, आप भी तो भस्म कर सकते हैं। वेदांत की भाषा में उसका एक शब्द दिया बड़ा प्यारा, बाध, बाध करना, बाध समझते हैं ना, बाध माने हटा देना, दूर कर देना। अगर सरल भाषा में कहें तो बाद वेदांत का एक टेक्निकल वर्ड है, बाद कर देना, हटा देना, दूर कर देना। क्या बाद करें हम, क्या बाद करें, तो वेदांत में है ये ब्रह्मास्मि माला है ना, देखो इसमें बड़ा प्यारा लिखा है, अहम् ब्रह्मा मम ब्रह्मा महद ब्रह्मा हम तथा इदम् ब्रह्मा अनिदम् ब्रह्मा। जो इदम है वह भी ब्रह्म है, और जो इदम नहीं है अनिदम है वह भी ब्रह्म है। तो बाद क्या करना है, इदम और अनिदम दोनों का बाद करना है। इसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं अध्यारोप और अपवाद। क्या बोलते हैं, अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप माने आपने अपने ऊपर कुछ आरोप कर दिया, आपने अपने ऊपर कुछ आरोप कर दिया, अब समझ में नहीं आ रहा, जब गुरु वाक्य आपने सुना तो उसको दूर करना चाहते हो, अपमाने दूर करना, उसका अपवाद कर दिया आपने, दूर कर दिया। तो हमने अपने ऊपर आरोप क्या किया, देखो हमने क्या आरोप किया अपने ऊपर, हमने अपने ऊपर आरोप किया शरीर को, केवल शरीर को ही नहीं, मन को, बुद्धि को, प्राण को, सुख और दुखों को, मन की प्रत्येक तरंगों को, प्रत्येक वृत्ति को, बुद्धि के प्रत्येक निर्णयों को, और इसके कारण मैं और मोर, मोर मेरा और मैं और मेरा, जो कुछ भी, इन सब का हमने अपने पर आरोप कर दिया ना आरोप। अब हम क्या कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं साधु हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अरे मैं धनपति हूं, मैं निर्धन हूं, ये सारा का सारा आरोप हमने अपने ऊपर कर दिया। आप पढ़ते तो हैं वो मनोबुद्धि अहंकार, पढ़ते तो हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, ये आपने अपने ऊपर आरोप किया है, ये आपने अपने ऊपर चद्दर ओढ़ रखी इनकी, ये तो आपने एडॉप्टेड कर रखे हैं। आप इन आरोपों को हटाते जाइए, लेकिन सहज में तो हटेंगे नहीं। देखो एकदम अगर हम हटाना चाहें तो एकदम ये हटने वाले भी, तो क्या करें इनका। तो महाराज इनके लिए शास्त्रों ने विधि बताई है। देखो पहले अगर आप स्थूल हैं, मतलब ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तो सूक्ष्म बुद्धि का मेरा मतलब कंप्यूटर वाली बुद्धि से नहीं है, तत्व को ग्रहण करने वाली बुद्धि से, तो फिर आप जप करें, तीर्थ उपासना करें, व्रत करें, तीर्थ यात्रा करें, फिर जप करें, फिर उपासना करें, धीरे धीरे भक्ति आएगी और भक्ति से ज्ञान आएगा, परंपरा आया है। लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको सत्संग करना होगा। जब बहुकाल करहिं सत्संगा, बहुत लंबे समय तक जब आप सत्संग करेंगे तो आपके संशय की निवृत्ति होगी, नहीं तो संशय की निवृत्ति होगी नहीं। कहेंगे महाराज ये महात्माओं को क्या मालूम, अच्छा भला बढ़िया, हम आहा क्या क्या कहते हैं, आजकल तो खत्म हो गए होगा बॉम्बे में आमरस है ना, तो हम अब इधर तो मौसम ऑफ हो गया होगा आम का, हाँ अब हम उधर से आए उत्तर भारत से, वहां तो चालू हुआ है, बढ़िया आमरस खा रहे मजा आ रहा है, बढ़िया मिठाई खा रहे मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, ये महात्मा कह रहे हैं सब मिथ्या है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमने आरोप कर लिया, अपने एक अपने आप को मान लिया, मान्यता बना ली कि मैं ये हूं। मान लो मेरा नाम रमेश है और सुन सुन करके मैंने एक अपनी मान्यता बना ली मैं रमेश हूं। अगर रमेश को कोई कुछ कहता तो दुख होता, और सुरेश को कहे तो, और पिताजी माताजी अब आपका नाम सुरेश रख देते तो, अरे मेरा नाम ये है क, मेरा नाम है, मेरी मान्यता ही तो है, मेरा नाम क है, ये मेरी मान्यता है, मैं तो कैसे परे हूं। इसी प्रकार से देह मैं हूं ये मेरी मान्यता है, मन मैं हूं ये मेरी मान्यता है, प्राण मैं हूं ये मेरी मान्यता है, बुद्धि मैं हूं ये मेरी मान्यता है, मैंने मान लिया, यही अध्यारोप है। अज्ञानता के कारण, जन्म जन्म के संस्कारों के कारण, जो मैं नहीं हूं उस मैं नहीं हूं को मैंने अपना स्वरूप मान लिया, इसी को कहते हैं अध्यारोप। और जब आप इसका अपवाद करते हुए चले जाएंगे तो जैसे भगवान शंकर त्रैलोक के सार हैं, तो ऐसे आप भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का बाद कर देंगे तो आप भी त्रैलोक के सार हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो त्रैलोक के सारे हरे, जैसे तीनों लोक भगवान शंकर के ऊपर टिके हुए हैं, अधिष्ठित हैं, अधिष्ठान शंकर हैं, ऐसे ही ये शरीर भी आप पर टिका हुआ है, आप इसके अधिष्ठान हैं। जैसे भगवान शंकर तीनों लोकों का लय कर देते हैं, ऐसे आप ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि के द्वारा तीनों प्रकार के शरीरों को भस्म करके आहा कितना आनंद आएगा। देखो त्रैलोक के सारे हरे, मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम अन्यस्तु किम कर्म भी। ऐसे भगवान शंकर में मोक्ष के लिए, टू गेट लिबरेशन, मोक्ष के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए, अरे संसार का बाध करने के लिए, अपने स्वरूप में ठहरने के लिए, ऐसे भगवान शंकर में अपनी अचल मनोवृत्ति को करो। मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम, अचलाम चित्त वृत्ति मोक्षार्थम कुरु, ऐसे भगवान शंकर में आप मन लगाओ, बाकी में कुछ रखा नहीं है। ये ऐसे भगवान शिव हैं महाराज, जो आपको सब कुछ प्रदान करने वाले, सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए हमने विचार किया भगवान शिव की कथा, ये 31 तारीख तक उनकी चर्चा करेंगे, कभी कहीं से कभी कहीं से उनकी कथा सुनाएंगे, क्योंकि बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान शंकर का एक नाम क्या है, आशुतोष, क्या नाम है, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। वृकासुर एक राक्षस था, वृकासुर क्या नाम था, वृकासुर, सुना आपने नाम वृकासुर का, नाम तो सुना है, हाँ जी, हाँ इंद्र का शत्रु भी है, वो वृत्रासुर था, इंद्र के शत्रु का क्या नाम था, वृत्रासुर, मैं वृकासुर की बात कर रहा हूं। खैर असुर तो सारे इंद्र के शत्रु ही होते हैं, वो आपकी बात गलत नहीं है, भाई जितने भी राक्षस हैं, यानी राक्षस वृत्ति देव वृत्ति का शत्रु वही करता है, वो आपकी बात ठीक है। तो इंद्र का शत्रु मान लो, अथवा देव वृत्ति का शत्रु मान लो, अथवा शुभ कर्मों का शत्रु मान लो, जो भी आप माने उसमें कोई बात नहीं। तो वृकासुर ने तपस्या की, तपस्या की, भयंकर तपस्या की। आप उसको भस्मासुर के नाम से जानते हैं ना, भस्मासुर के नाम से जानते हैं। हाँ, तपस्या की। और महाराज तप के लिए मांगा, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही। क्या बात है! भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु। अब उनके ही सिर पर हाथ रखने के लिए चल दिए। अब ये भी भोलेनाथ की महिमा है, अगर वो चाहते तो वहां से अदृश्य भी हो सकते थे, वो चाहते तो अदृश्य भी हो सकते थे, वह चाहते तो उसी की बुद्धि उलट करके उसी के सिर पर हाथ रखवा देते। वो कुछ भी करने में समर्थ थे, लेकिन लीला करनी है महाराज, लीला। उन्होंने लीला की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, भक्त अपने भगवान अपने भक्त की महिमा भी बढ़ाना चाहते हैं, भक्त भगवान अपने भक्त की महिमा भी व्याख्यापन करना चाहते हैं। तो उन्होंने, मेरे एक भक्त हैं विष्णु, क्या नाम उनका? विष्णु। आज मेरे भक्त विष्णु की महिमा पढ़नी चाहिए, तो दौड़ने लग गए। महाराज आगे आगे दौड़े। अच्छा, अंतर कितना? अगर एकदम दौड़ करके आगे चले जाते तो वृकासुर भस्मासुर भागता नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं देते तो किसके पीछे भागते। तो दूरी भी मेंटेन किए हुए हैं और पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं, पकड़ में भी नहीं आ रहे, दूर भी मेंटेन किए हुए हैं। खैर, जो आगे की घटना आपको मालूम है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है, वो क्या है? आशुतोष है। क्या है? आशुतोष। जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। अगर आप भगवान शंकर की आराधना करें तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, बड़ी जल्दी। अरे, आपको कुछ ना मिले तो रास्ते में चलते हुए किसी पेड़ का ही पत्ता उठा लाइए, वही चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। रास्ते में कोई फूल मिल जाए, वही तोड़ के चढ़ा दीजिए, तो प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कुछ भी ना मिले तो एक लोटा जल तो मिल सकता है। कहते हैं कि एक बार एक चोर मंदिर में, घंटी थी शिवजी के मंदिर में, उसको उसका चुराने का मन कर गया। कोई नहीं था, जैसे चोरी करने लगा तो हाथ नहीं आया तो सिर के ऊपर ही शिवजी पर ही चढ़ गया। शिवजी प्रसन्न हो गए। चोर घबराया, शिवजी ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा वरदान? मैं तो चोरी करने के लिए आया था। शिवजी ने कहा छोड़ो, कोई तो फूल पत्ते चढ़ाता तो तू सारा का सारा ही चढ़ गया। ये दोष नहीं देखते, ये दोष नहीं देखते, यही भगवान की भगवत्ता है। अगर भगवान दोष देखने लग जाए, देखो, अगर भगवान दोष देखने लग जाए तो किसका उद्धार हो सकता है? एक ही वाक्य है। कल हमारे सामने दो वाक्य लिखवाने के लिए आए कि भाई रोज प्रतिदिन यहां भेजते हैं, एसएमएस करते होंगे, तो पहली बार हुआ। एक वाक्य अब हमारे दिमाग में आ गया, एक ही वाक्य, ईश्वर जीव का दोष नहीं देखता और जीव ईश्वर की कृपा को नहीं देखता। ईश्वर जीव का दोष नहीं देखता और जीव ईश्वर की कृपा का अनुभव। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, और उनकी कितनी महिमा है, कितनी महिमा है, हम आपको क्या बताएं। आप अगर उनकी महिमा इसी तरह से लगातार सुनने चाहेंगे तो फिर आज का तो समय हो गया, कल आना पड़ेगा आपको। है, भगवान की महिमा अपरंपार है, अनंत है। वैसे ही स्वाभाविक ही प्रातःकाल उठे तो मन कर गया, यहां आए तो मंत्र भी वही उच्चारण हो रहा था। तो ये थोड़ी सी चर्चा हम 31 तारीख तक भगवान शंकर पर करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: போலே சச்சிதானந்த பகவானிக்கு, சத்குருதேவ பகவானிக்கு. பரம் பூஜ்ய பிராத்தாயஸ்மரணீய ஸ்ரீ சத்குருதேவ பகவானுக்கு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தோமே சாஷ்டாங்க பிரணாம். பரம் பூஜ்ய பரம் ஸ்ரத்தே ஸ்ரீ பிரேம்புரிஜி மகாராஜ் கே ஸ்ரீ சரணாரவிந்தோமே சாஷ்டாங்க பிரணாம். ஹம் சபி லோக் ஆஜ ஹமாரே பூஜ்ய குருதேவ் பாவன் பிராகட்ய திவஸ் கே உபலட்ச மே, ஜிஸ்கோ ஹம் லோக் ஆனந்த ஜெயந்தி மஹோத்சவ் கே நாம் சே ஜானதே ஹே, சபி சந்த மஹாபுருஷ் ஔர் ஹமாரே பக்த வ்ருந்த் உபஸ்தித் ஹே. சர்வப்ரதம் ஸ்ரீ மதுபாய் திஜோரிவாலா, கிரீஷ் பாய் ட்ரெஸ்வாலா, ஸ்ரீ லலித் க்ரோவர், ஸ்ரீ ராஜ்குமார் ஷோரேவாலா சந்தோ கா மல்யார்ப்பண் கரேங்கே. குருதேவ் கி கிருபா சே ஆஜ் ஹம் சபி லோக் யஹாம் உபஸ்தித் ஹே உன்கே பாவன் ஆனந்த மஹோத்சவ் மே. அநேக சந்த மஹாபுருஷ் படி கிருபா பூர்வக் யஹாம் பர் பதாரே ஹே. மாரே சுவாமி ஸ்ரீ உமேஷானந்தி மஹாராஜ் ஜோ ஜ்ஞான விருத்த வயோவிருத்த ஹம் சபி கே மார்க்தர்ஷக் ஹே, உன்சே ஹம் சபி லோக் ஆஜ் கி சபா கி அத்தியக்ஷதா கே லியே நிவேதன் கர்த்தே ஹே, ஔர் உன்ஹோனே ஹம் லோகோ கோ கிருபா பூர்வக் ஸ்வீகிருதி தி ஹே. பூஜ்ய சுவாமி பிரத்யக் போதானந்த் ஜி, பூஜ்ய சுவாமி ஸ்வரூபானந்த் ஜி, யஹாம் ஜோ கை லோக் பைட்டே ஹே, மஹாராஜ் ஜி கே சேவா மே ஆப் லோகோ நே உன்கோ தேகா ஹே, இஸ் சமய ஷாயத் பஹச்சான் நஹீ பா ரஹே ஹோங்கே கை லோக். கியோன் கிரீஷ் பாய் பஹச்சான் ரஹே நஹீ, ஸ்வரூபானந்த் ஜி வோ பைட்டே ஹே, கியோன்கி உன்கா தோடா வேஷ் பதல் கயா ஹே. தோ பூஜ்ய சுவாமி பிரபுத்தானந்த் ஜி, சுவாமி கோவிந்தானந்த் ஜி, சுவாமி விமலானந்த் ஜி ஔர் சுவாமி ஸ்வரூபானந்த் ஜி சாரோ சேவா மே ரஹதே தே, வோ ஸ்வாபாவிக் யஹாம் பதாரே, படி குஷி கி பாத் ஹே. ஹமாரே பாடக் ஜி ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ் ஜி பாடக், ஜின்ஹோனே மஹாராஜ் ஜி கே அம்ருத் மஹோத்சவ் கா படா குஷல் சஞ்சாலன் கியா தா, ஔர் ராம் கதா கே படே சரஸ் வக்தா ஹே, வோ பி படே பிரேம் பூர்வக் யஹாம் பதாரே. ஹமாரே சுவாமி ஹர்தீர்த் ஜி மஹாராஜ், ஹம் லோகோ கோ பதா நஹீ தா கஹாம் ரஹதே ஹே, கோ அட்ரெஸ் நஹீ தா, லேகின் படா பிரேம் ஹே இன்கா, பிரதிவர்ஷ் யே உத்சவ் மே தியான் ரக்க யஹாம் பதாரதே ஹே, இன்கா ஸ்னேஹ் ஹே. சபி சந்தோ கே

0: पचास साल के ऊपर की बात है, मेरा पिताजी महाराज जी को सुनने के लिए प्रेम कुटीर में नरीमान पॉइंट पे वहां शाम को 5:30 से 6:30 बजे का प्रवचन महाराज जी का होता था, वहां जाते थे। मुझे कहता था कि तुम चलो सुनो महाराज जी को, आपको आनंद आएगा। तब इतना दिमाग में मेरा नहीं उतरता था। पीछे क्या हुआ कि महाराज मेरा पिताजी को लेने के लिए मैं 6:10 बजे वहां पहुंच जाता था। बूट टाइप कोट पैर टू पहरा हो तो अंदर तो जा नहीं सकता था, बाहर से महाराज जी की वाणी में सुनता था 10 मिनट के लिए। और इतने में मेरा पिताजी का देहावसान हो गया और एक धक्का मारा और मैं महाराज जी का भक्त हो गया। अब देखिए ये समय पे महाराज जी का भागवत पर प्रवचन क्राइस्ट मैदान में होता था। अब ये मेरी ऑफिस से बहुत नजदीक में था तो मेरी माता जी को मेरी बहन कुछ को मैं वहां रख के ऑफिस आता था, वहां से वहां भी 2 घंटा बैठता था। ये मेरी पहली महाराज जी के साथ पहचान हो गई। पीछे तो मैं महाराज जी का अनन्य भक्त हो गया, माने महाराज जी हो तो मैं सुनने के लिए जाऊं, नहीं तो मैं सत्संग में नहीं जाता था। महाराज जी के वाणी सुनते सुनते सत्संग का महिमा ऐसा बैठ गया कि पीछे कोई दिन भी ऐसा न जाए कि जब मैं सत्संग में ना आ पाऊं। कोई भी संत महात्मा का प्रवचन हो तो मैं सुनता रहता था। और ये बात आज 50 साल हो गया। और महाराज जी के सत्संग में महाराज जी का भागवत मैंने 1 हफ्ता का सुना, 2 हफ्ता का सुना, 3 हफ्ता का सुना, ऐसा महाराज जी का भागवत थे। और जब 3 हफ्ते का महाराज जी का भागवत था तब वहां हरिद्वार में सब 200 संत महात्मा भागवत की पुस्तक लेके बैठ जाते थे। स्वामी चन्मयानंद जी भी महाराज भी आके बैठे थे। ये बड़ा सत्संग की महिमा थी महाराज जी का। पीछे महाराज जी का प्रवचन महाराज जी तो बताते थे कि शास्त्र की कोई भी बात की संगति लगा रहा तो मैं लगा सकता हूं, शास्त्र कोई भी बात मेरे से छुपाते नहीं है, ऐसे सत्संग का महिमा महाराज जी का था। पीछे वो भक्ति मार्ग होवे ज्ञान मार्ग होवे तो ऐसा लगे कि ऐसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, भक्ति की बात करें तो ऐसा भक्त कोई है ही नहीं। ऐसा संत महात्मा के चरणों में बैठने का हमें बहुत ही सत्संग का लाभ मिला और ये भी आज तक भी मिलता रहता है। स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम।
1: बहुत सुंदर मधु भाई ने अपने भाव और स्वाभाविक सहज उनकी जो अनुभूति थी वो व्यक्त की महाराज जी के चरणों में। अब हमारे प्रेमपुरी आश्रम के आचार्य और पुरोहित पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री जो हमेशा प्रत्येक प्रसंग में पूजन का कार्यक्रम संपन्न करवाते हैं वो मंगलाचरण के साथ अपने भाव पुष्पांजलि महाराज जी के आनंदोत्सव में समर्पित करेंगे।
2: वागर्थाविव संप्रुक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की, आज के आनंद की। परम पूज्याः अध्यक्ष महाभागाः संतः उमेशानंद जी, परम पूज्याः प्रत्येक बोधानंद जी महाभागाः, परम पूज्याः संतः गिरीशानंद जी महाभागाः, परम पूज्याः स्वरूपानंद जी महाभागाः, उपस्थिताः संतः विद्वद्वरेण्यः पाठक जी महाभागाः, उपस्थित सभी भक्तजन, हमारे आश्रम के ट्रस्टीगण, मुझे 2 मिनट आनंद जयंती के उपलक्ष में बोलना है। सर्वप्रथम यही जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में कि हमारे शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सबको विदित हैं, लेकिन वैसे ही 3 ऐषणाएं बताई हैं। व्यक्ति का जीवन इन ऐषणाओं पे निर्भर रहता है। ऐषणा मतलब इच्छा,

0: प्राणेशणा, धनेशणा और परलोकेशणा, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। ये सामान्य सिद्धांत, ऐसा नहीं कि कोई अस्वस्थ चाहता ही नहीं अपने आप को। तो प्राणेशणा माने स्वस्थ रहना चाहता है हर व्यक्ति, और जीने के लिए धन की आवश्यकता रहती है, तो दूसरे नंबर पे धनेशणा दिया, और वैसे ही तीसरे क्रमांक पे परलोकेशणा है। तो ये परलोकेशणा का मतलब होता है भारतीय सिद्धांत में, भारतीय संस्कृति में परलोक को मान करके अच्छी गति हो उसके बारे में इच्छा करना। अब अनेक प्रकार के इसमें धर्मशास्त्र के सिद्धांत हैं, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि महाजनो ये न गतस्य पंथा। अनेक तर्क हैं, धर्म के विचार अनेक अनेक हैं, लेकिन इस ऐषणा को जानने के लिए किसी महापुरुष के वाक्यों के चरण में चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी महापुरुष के वाक्यों के चरण में चले जाओ तो परलोकेशणा साध्य हो सकती है। मेरा यही कहना है कि महाराज जी के प्रवचनों को मैंने कम सुना है, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से मैं देखता हूं, सत्साहित्य प्रकाशन के जितना साहित्य है महाराज जी के प्रवचनों का, वेदों के वाक्य, वेद का, उपनिषद के, पुराणों के, वेदांत के, कोई भी महाराज जी से अछूता नहीं, अलग नहीं है। कोई भी विषय, व्याकरण का विषय रहे, मैंने तो बहुत जगह काम सूत्र का उल्लेख करके बताते हैं यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ा है। मेरा आज के दिन का कहना यही है कि इधर उधर जाने की हमको कहीं जरूरत नहीं, महाराज जी का जो प्रवचनात्मक साहित्य है उसको पढ़ करके महाराज जी के चरण में बैठ जाइए, और आनंद ही नहीं, कहां पे हम पहुंच जाएंगे, अखंड आनंद के चरण में हम पहुंच जाएंगे, तो फिर आनंद की अनुभूति और परलोकेशन अपने आप साध्य हो सकती है। यही मेरे आज के दो वाक्य हैं। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय।
1: बहुत सुंदर विश्वनाथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पूज्य महाराजा श्री जी के ग्रंथ ही उनकी उपस्थिति की अनुभूति करा देते हैं, उनका वांग्मय विग्रह है, हम लोग उससे भी बहुत मार्गदर्शन लेते हैं। अब हमारे पाठक जी के पौत्र हैं अभिषेक, वो महाराज जी के चरणों में एक दो श्लोक सुनाना चाहते हैं, अनेक संतों के प्रिय हैं, पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी का भी बड़ा प्रेम है इन पर, तो एक श्लोक सुनाएंगे, एक श्लोक दो श्लोक जो भी, और उसके बाद हमारे आदरणीय सोमदत्त जी अपने भाव व्यक्त करेंगे।
2: ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महाराज श्री के श्री चरणारविंद में इस बालक का प्रणाम। उपस्थित सभी संत वृंद एवं गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम एवं सभी महानुभाव। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो पूज्य महाराज जी की आनंद जयंती पर मुझे सभी संतों को श्रवण करने का एवं महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि कुछ बोल सकूं, लेकिन अपनी वाणी पवित्र करने हेतु दो शब्द संतों से ही सुना हुआ मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे सनातन धर्म में गुरु को विशिष्ट स्थान दिया गया है, सर्वोपरि गुरु हैं, यहां तक कि भगवान से भी ऊपर हम गुरु को मान्यता देते हैं। भगवान शंकर की पूजा करें, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और आदि आदि सभी देवताओं की पूजा करें, परंतु इनकी पूजा ना करके केवल हम पहले गुरु की पूजा भी करें तो उन सब की पूजा हो गई। क्योंकि हम सभी लोग इस श्लोक का श्रवण करते हैं, गान करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुदेव ही विष्णु है, गुरुदेव ही शंकर हैं एवं साक्षात परब्रह्म श्री गुरुदेव हैं। और उसमें भी ऐसे सद्गुरुदेव, ये हमारे लिए एक बोनस पॉइंट जैसा है। मैंने महाराज जी के दर्शन नहीं किए, इसीलिए उनके बारे में बोलना इतनी योग्यता नहीं है, परंतु कुछ उनके एक श्लोक जब हम स्तुति करते हैं तो महाराज जी के श्लोक में आता है कि पवित्रा यद वाणी प्रविशति विचित्रा हृदि यदा तदाकारा छिन्ना भवति निखिलाकार घटिता। जब हम महाराज जी के पवित्र वाणी को हृदय में लेते हैं, यानी उनकी पवित्र वाणी हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तो ये जो नाना ये नाम और रूप से जो बना हुआ संसार है ना, जेल, जब उनकी वाणी हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो ये जो नाम और रूप से बना हुआ संसार है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, अर्थात हमें इस नाम और रूप का बोध हो जाता है और उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। ये महात्मा महाराज जी का है और मुझे आज्ञा हुई थी बोलने की, लेकिन मैंने दो शब्द बोलकर अपनी वाणी पवित्र किया। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की।
1: अभिषेक ने अपने भाव व्यक्त किए। अब आदरणीय श्री सोमदत्त जी गद्य और पद्य कविता के रूप में इस आनंद जयंती को आनंदमय बनाएंगे।
3: नारायण नारायण नारायण नारायण। ये महाराज जी का आनंद जयंती का 101वां अवसर है। पिछले साल हम लोग सोम लाए तो विशेष अवसर हो गया 101 का, 100 से ज्यादा का महात्म्य हो गया। और इसका उल्लास, इसका उत्साह आप सबकी उपस्थिति से हृदय में उछलते हुए आनंद से प्रकट है। बात पिता पुत्र की तिजोरी वाला जी ने की, उस पिता का इनको घर ले जाना ले आना आनंद से सराबोर करता है। हमारे शास्त्री जी की बात पुस्तकों की थी, वो भी नहीं छोड़ता, वो जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें आनंद से विभोर करता है। हमारा प्रेमपुरी में आना हमको आनंद देता है। श्रावण महीने में शंकर जी का अभिषेक, अभिषेक की वाणी से प्रकट होता है। ये सब आनंद के कारण घूम फिर के हमको आनंद देते हैं। तो ये जो छोटा छोटा छोटा छोटा आनंद कहीं एक अखंड आनंद बन के बैठ जाता है, जो जन्म मरण को काटता है, ये हम यहां सुनने के लिए आते हैं। वो जन्म क्या है, वो मृत्यु क्या है, एक पावन प्रसंग नाम का ग्रंथ है जो महाराज श्री की जीवनी की एक छोटी सी रूपरेखा है। महाराज श्री से किसी ने कहा कि कोई आपकी जीवनी लिख दे, जन्म कैसे हुआ, क्या रहा जीवन में। महाराज श्री ने कहा कि एक गांधी जी की जीवनी लिखने को नेहरू जी को बोल दो और गांधी जी की जीवनी चर्चिल को बोल दो लिखने के लिए, तो दोनों एक जैसी होंगी क्या। तो जो लिखेगा हमारे बारे में वो अपनी वासना अपनी इच्छाएं उसमें डाल देगा। तो मेरा जीवन महात्माओं से भरा है, तो जो मैं बोलूंगा वो ज्यादा अच्छा है। तो महाराज जी ने एक एक संस्मरण जिस महात्मा के पास गए और उससे जो सीखा, ये महाराज जी का आनंदमय जीवन, हम आज उसका दर्शन करेंगे। और आनंद की जो वर्षा होनी है उसके लिए आप लोग अपने अपने पात्र उन्मुख कर दें, भर दें लबालब। और ये भर के रखने के लिए नहीं होता है, ये भर के फिर वापस उड़ेल देने के लिए होता है। और उसकी एक झांकी शाम को आज विपुल में ग्वाल बाल के ढंग से हम लोग दर्शन करेंगे। और यहां जो मिल रहा है उसको तो हम ले ही, उससे भी वंचित न हो, मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। नारायण नारायण नारायण।
1: हमारे डालमिया जी शायद थोड़ा विलंब हो गया, उनको नहीं आ सके अभी, तो मैं गिरीश भाई से कहूंगा अपने ट्रस्ट की ओर से महाराज जी के चरणों में अपने भाव समर्पित करेंगे। श्री गिरीश भाई।
4: हरिओम। कल ही एक सुपरस्टार की देहांत हुई, उनके शब्द थे, आनंद मरता नहीं, आनंद मरा नहीं। और प्रतिवर्ष 101 वर्ष तक की आनंद जयंती हमारे हृदय में ऐसे बसी हुई है कि ऐसे लगता है कि महाराज जी संपूर्ण रूप से हमारे बीच में ही है और हमें आनंद के हसगुल्ला यहां तो वह हमारे सामने संत लोग हैं, बहुत ही सुंदर बातें प्रस्तुत करेंगे जिससे हम लोग आनंद के हसगुल्ला में डूब जाएंगे। तो ऐसी सुंदर बातें हमारे बीच में आ रही है। कभी कभी लगता है सत्संग में बैठ के कि हमारे रोम रोम में कुछ हो रहा है, इतनी वेद की वाणी सुनते हैं, इतनी ज्ञान सुनते हैं, जहां भी हाथ लगावे लगता है कि कुछ यहां गूंज रहा है, कुछ यहां गूंज रहा है, कहां यूं। तो प्रत्येक शरीर के अंदर हम एक रोमांच महसूस करते हैं कि ज्ञान जो सत्संग में आज 30-30, 40-40, 50-50 साल के जो श्रोता है या हमारे जैसे कोई नए खिलाड़ी भी है मगर बराबर यहां आते हैं, तो उसके रोम रोम में यह महसूस होता है। मगर पता नहीं क्यों जब हृदय पर हाथ लगाते हैं तो ऐसा कोई चमत्कार महसूस नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है। एक बहुत ही आनंद की बात है, तो एक छोटा सा चुटकुला है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया कि भाई साहब हमारे तकलीफ यह है कि जहां मैं उंगली रखता हूं वहां दर्द होता है, तो उसका कारण क्या। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी तो ऐसा है कि आपके पूरे शरीर का हमें एक्सरे लेना पड़ेगा तभी पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सरे लिया गया, दूसरे दिन वह वहां पहुंचा, फिर उसने पूछा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा कि भाई देखिए आपके अंगुली में ही फ्रैक्चर है, जहां भी आपकी अंगुली पहुंचती है वहां दर्द महसूस होगा ही होगा। तो यह ऐसी हम जीवन में भी महसूस करते हैं कि यहां क्यों हमें रोमांच नहीं होता। तो अपनी जो अंगुली, कल प्रत्येक बुधानंद जी ने बहुत ही सुंदर इससे अंगुली की पूरी चर्चा की हमारे बीच में, बहुत ही अद्भुत चर्चा थी, हम सुनते भी है पर वापस स्मरण भी हो गया और उनकी जो वाणी है उससे हम पवित्र भी हुए कि जो हमारी पांच उंगली है उसके महत्व क्या है। तो ऐसी सुंदर बातें हम हमेशा संतों से सुनते हैं। आप सबसे निवेदन है कि प्रातः प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन, सायं गीता चिंतन माला, ऐसे सुंदर प्रसंग है कि संत हमेशा उपस्थित रहते हैं। जो अखाना जी महाराज का प्रातः 7:15 से 7:30 प्रवचन होता है, रविवार को 4:30 से 5:30 तक वीसीडी पे उनके दर्शन एवं प्रवचन होते हैं, विपुल में भी रविवार को उनके दर्शन और प्रवचन का लाभ मिलता है। तो अखंडानंद जी महाराज तो हमारे रोम रोम में है ही है, खाली एक अंगुली पहुंचनी चाहिए, पता नहीं कब यह फ्रैक्चर हमें दिखाई दे। आप सबसे फिर से वंदन करते हुए, संतों को वंदन करते हुए, हरिओम।
1: गिरीश भाई ने बहुत सुंदर बात कही, और दर्द जहां उंगली रखते हैं वहां नहीं है, दर्द अपनी उंगली का ही है। हम लोग अपने को ठीक करेंगे तो सब जगह आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, बाहर को ठीक करने से कुछ होगा नहीं। भले वो कोई भी दृष्टांत था लेकिन भाव बड़ा सुंदर था। अब हमारे मंच में सब विराजमान संत महापुरुषों का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हम लोग काफी संख्या में उपस्थित हैं संत लोग, इसलिए हम समय को थोड़ा व्यवस्थित करके 10-10 मिनट में हमारे स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी और अध्यक्ष जी, इनको तो समय की छूट है, बाकी हम लोग 10-10 मिनट में अपने भाव व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम श्री श्रीनिवास जी पाठक मानस के माध्यम से पूज गुरुदेव को लेकर के कुछ आनंदमयी चर्चा करेंगे। श्रीनिवास जी पाठक अब विराजी, माइक वहीं आ जाएगा।
5: श्री राम। माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र सर्वस्व मे राम चंद्रो अरुण। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। भगवान नाम ले लें एक क्षण।

पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज। सभी संतों के चरणों में सादर नमन करते हुए एक छोटी सी बात आपको रामायण की ही है। शबरी के आश्रम पर राम जी आए। जब शबरी के आश्रम पर राम जी पधारे और शबरी ने देखा उनको, तो वहां एक ऐसी बात तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले शबरी देखी राम गृह आए। शबरी ने देखा कि राम जी आ गए मेरे यहां। तो किसका स्मरण हुआ? बोले शबरी देखी राम गृह आए, गुरु के बचन समूझी जी भाई। श्री शबरी माता ने गुरुदेव के वचनों का स्मरण किया और श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन किया। भगवान भी पधारे हैं तो ये श्री गुरुदेव के वचन का प्रभाव है। हमारे आचार्य जी ने और हमारे गिरीश भाई जी ने, मधु भाई ने तो बहुत बहुत बड़ी बात कही बचपन की। कुछ ही लोग दिखाई देते हैं अब। महाराज श्री जी के समय के श्रोताओं में गिरीश भाई उस समय रहे होंगे श्रोता, पर बहुत छोटे रहे होंगे। हरि भाई जी संभालते थे, मधु भाई थे, चिवन भाई थे, बहुत कम श्रोता हैं महाराज श्री जी के समय के, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे। तो बात यह है कि गुरु के वचन पर हमारा जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही हमारा कल्याण होगा। महाराज श्री जी पूरे विश्व के एक ऐसे महापुरुष, हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके समय में ये शरीर था और बाद में भी उनके साहित्य का और उनके स्मरण का हम लोगों को अवसर मिलता है। ऐसे महाराज श्री जी के वाक्यों का, महाराज श्री जी के वचनों का, महाराज श्री जी के जो विचार हैं उनका जितना हम स्मरण करेंगे उतना ही हम भगवत समीप होते जाएंगे। इस बात को हम लोग स्मरण रखें और सदैव सत्संग से जुड़े रहें। हमारे गिरीश भाई ने अपने वक्तव्य में, अपने प्रवचन में ये सत्संग का प्रचार कर दिया कि भैया सत्संग में आते रहना तो आनंद जयंती में आए, और सत्संग में नहीं आए तो आनंद जयंती में आए नहीं आए बराबर। हमारे गिरीश भाई को बार बार साधुवाद, धन्यवाद।

0: इसी प्रेमपुरी आश्रम में महाराज श्री की कृपा हमारे ऊपर हुई थी। ये स्वरूपानंद जी महाराज उस समय महाराज जी की सेवा में थे। पांचवें माले पे महाराज जी ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की थी। स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, स्वामी श्री प्रबोधानंद जी महाराज, इन सबका सानिध्य था। और स्वामी श्री विमलानंद जी महाराज, सभी के चरणों में बारम्बार नमन। और पूज्य चरण श्री स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज को हम बार बार साधुवाद, धन्यवाद तो इन्हें क्या देंगे, साधुवाद ही देंगे कि जिन्होंने आनंद जयंती का दो बार स्मरण करा के, कल तो हमारी स्थिति हो गई थी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पर उन्होंने उनको बल दिया कि नहीं आना है आओ, तो इनकी कृपा से, महाराज श्री जी कृपा से यहाँ आपका दर्शन हो गया। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। समय का ध्यान रखते हुए महाराज जी की
1: बोले, सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे पाठक जी ने बहुत ही मधुर वाणी में और शबरी के प्रसंग के माध्यम से आनंद जीवन में कैसे प्रकट होता है ये हम लोगों को श्रवण कराया। पाठक जी की वाणी और भाव दोनों ही आनंदमय थे। अब हम सभी लोग, हमारे मध्य में विराजमान स्वामी श्री हरितीर्थ जी महाराज, जो बड़े सहज संत हैं और स्वाभाविक ही महाराज जी को उत्सव में पधारते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा अपने भाव समय की सीमा में महाराज जी के चरणों में रखें। श्री स्वामी हरितीर्थ जी महाराज।
2: सभा सरस्वती नमः। मैं पहली बार यहाँ बोल रहा हूँ।
3: ओम नमः शिवाय।
4: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
5: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Om Vatrankarne Vishunyama Devaha.

मांडुक्य उपनिषद मंगलाचरण की कल जो बात हमने की थी वो मंगलाचरण परम पूज्य आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई प्रार्थना कि वो परमात्मा कैसी प्रार्थना है, मैं ब्रह्म को, मैं ब्रह्म के वो यथार्थ स्वरूप को जानूं। यथार्थ यानी यथा अर्थ, जो अर्थ शास्त्र के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, वेद के द्वारा अपेक्षित है, वही अर्थ को मैं जानूं, वैसे ही मैं ब्रह्म को जानूं, इसीलिए प्रार्थना करनी है। ये यथार्थ शब्द का अर्थ है। और यथार्थ यानी क्या, कि मैं परमात्मा को अस्मि प्रत्यय से जानूं। मेरी अंतिम जो अनुभूति है, मेरे जानने में जो अंतिम अनुभूति, हमारे जीवन का कोई अंतिम विचार है ना, तो वो यही होगा अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि ये विचार के बाद, ये अंतिम वृत्ति के बाद फिर कोई वृत्ति नहीं रह सकती। अंतिम वृत्ति क्या, ये सागर की बूंद जो है वो बस पड़ने में ही है, सागर में घुलने में भी है। तो घुलने के पहले की जो अंतिम विचार क्या होगा, भाई अहम ब्रह्मास्मि। अगर ऐसी क्षण आ जाए हमारे जीवन में कि उसके बाद कोई भी और वृत्ति उठे ना, तब समझ लेना कि ये अंतिम वृत्ति है। क्योंकि ये तो हम मुखपाठ कर सकते हैं, रोज अहम ब्रह्मास्मि बोल के फिर रोज अपना कार्य करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। यानी शंकराचार्य जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से मैं वो शास्त्र को जानूं। तो हमारा भी कर्तव्य क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है हमारे जीवन में, सोच लीजिए कि भाई मेरा आज के बाद अगर परमात्मा को मैं प्राप्त करने निकली हूं तो, ये एक ही प्रश्न है। अगर मुझे परमात्मा चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, पूर्णता चाहिए, तो आज के बाद, ये क्षण के बाद मेरा जीवन, मुझसे सोचा गया हर विचार, हर कर्म, बोली गई हर वाणी, मेरे कान से श्रवण किए गए हर शब्द, मेरे आंख से देखा गया हर रूप, मेरे हाथ से स्पर्श की गई सब चीजें, मेरा जो भी व्यवहार है, वो अब ये अहम ब्रह्मास्मि तक मैं कैसे पहुंचूं, उसी दिशा में अब रहेगा। अब देखिए कितनी अलर्टनेस होगी जीवन में। हाँ, सब व्यवहार जो भी आप करते हैं वो करते जाना चाहिए, पर भीतर जो है, भीतर वो प्रत्यभिज्ञा जो है, प्रत्यभिज्ञा यानी याद रखना है जो आपके पास है, ऑलरेडी है, उसे ही याद रखना है। रिकॉलिंग इस प्रत्यभिज्ञा, कोई और को बाहर से याद नहीं करना है, वो स्मृति का विषय हो गया। मेरा जो अहम प्रत्यय भीतर है उसी को याद करना, उसी का स्पंदन है, उसके बारे में सजागता, सतत सजाग रहना, वही मेरे जीवन का अब उद्देश्य, यही अंतिम लक्ष्य, अंतिम गंतव्य स्थान होगा। तो इसीलिए जो प्रार्थना शंकराचार्य जी ने की थी, अब उसका जो दूसरा श्लोक है उसके ऊपर हम विचार करके उपनिषद के मंत्रों में प्रवेश करेंगे। यो विश्वात्मा विदिज विषयान

जो सर्वात्मा जागृत अवस्था में शुभ अशुभ कर्म जनित स्थूल भोगों को भोग कर फिर स्वप्न काल में, अभी यहां परमात्मा को क्या कहा है, देखिए विशेषण क्या दे दिया है, विश्वात्मा यानी जो विश्व का आत्मा, यहां परमात्मा नहीं कहा क्योंकि जैसे आप पर शब्द बोलेंगे परमात्मा आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, पर यानी क्या, देश से पर, काल से पर, वस्तु से पर, तो फिर आगे क्या हो सकता है, इसीलिए यहां क्या कहा शंकराचार्य जी ने, यो विश्वात्मा हो, अब मैं आपको विश्व का आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए विश्व से ही जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये विश्व है, ये शरीर वन बुद्धि का संघात जो है वो दृश्य प्रपंच का एक भाग रूप है, और हमारे हमको भी विदित क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, तो ये शरीर मन बुद्धि के संघात का ही ज्ञान है, किसके जरिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये संघात को ही सत्संग में ले जाते हैं, जो भी बुद्धि मेरे पास है, मेरी जितनी बुद्धि है उसी से मैं ये ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न कर रही हूँ, मेरे मन से जो युक्ति जो हम करते हैं, मनन, देखिए ये मन जो है संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति, वो ऐसे ही नहीं दी गई है हमको प्रपंच करने के लिए नहीं दी गई है, ये क्या है, कौन है, कहाँ गई, क्या किया, इसके लिए ये मन नहीं है, ये मन का दुरुपयोग हो गया, तो भाई मन बहुत बुरा है, मन संकल्प विकल्प करता है इसलिए हम विक्षिप्त हो जाते हैं, मन अच्छा है कि संकल्प विकल्प कर रहा है, अगर परमात्मा ने ही दिया है ना तो उसका कुछ उपयोग होगा, परमात्मा दुरुपयोगी चीज को नहीं दे सकते, तो क्या उपयोग है इसका आप बता सकते हैं, तो बोले कि भाई ये संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति जो दे दी है ना मन की, उसका सदुपयोग करो मनन में, मनन याने क्या, संशय जो भी आप श्रवण करते हैं उसमें संशय या प्रश्न हुआ, शंका हुई, तो उसके बारे में संकल्प विकल्प कीजिए, ये जो आपको प्रॉपर्टी दी है, ये मन जो दिया है उसका ये सदुपयोग है, अगर मन नहीं होता ना तो आप संकल्प विकल्प युक्ति लगा ही नहीं सकते, आप युक्ति नहीं लगा सकते तो आप मनन ही नहीं कर सकते, और मनन नहीं कर सकते तो मनन बिना निधिध्यासन अशक्य है, क्योंकि श्रवण तो कोई दूसरे का हो गया, मेरा अंगत निजी तब बनता है जब उसमें से मैं मेरे प्रश्न को हल करके मेरी बुद्धि को समाहित कर दूं कि भाई ये ज्ञान है और ये अभी आज से तुझे मानना है, तो ये मन की जो वृत्ति है आपसे निर्णय ले लीजिए कि भाई मन जो है वो बुरा नहीं है, संकल्प विकल्प है वो बुरा नहीं है, संकल्प विकल्प जाए जो विषय जो है वो बुरा है, वो विषय की जो सिलेक्शन है वो बुरी है, विषय का सिलेक्शन मैंने बराबर नहीं किया, मैं कोई व्यक्ति के बारे में संकल्प विकल्प करता रहता हूँ, मैं कोई वस्तु के बारे में संकल्प विकल्प करता रहता हूँ, ये अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये मुझे मिले या मुझसे दूर जाए, या ने राग और द्वेष का विषय बना लिया है ये संकल्प विकल्प को, देखो कितना दुरुपयोग किया है, कितना नीचा उपयोग किया है, ये तलवार से सब्जी काटने जैसी बात है, बड़ी चीज का उपयोग बड़ा ही होना चाहिए, उसकी अमान्य रखनी चाहिए ना, उसको उसका मान सम्मान मिलना चाहिए, ये मन की जो वृत्ति है उसको कितना हमने नीचे गिरा दिया है, हाँ दूसरों के बारे में, व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति ऐसा हो ऐसा न हो, ऐसा होगा तो क्या, ऐसा था वो अच्छा नहीं था, हम जीते किसमें है, तो ये मन की वृत्ति का सरासर दुरुपयोग है, तो क्या करना है, मन के साथ कुछ नहीं करना है, मन को विषय दे देना है कि तुझे सोचना ही है ना, तुझे संकल्प विकल्प करना ही है ना, ब्रह्म के बारे में कर, परमात्मा के बारे में कर, विश्व क्या है वो सोच, आत्मा क्या है वो सोचो, पंच महाभूत क्या है वो सोचो, पंच महाभूत से पर क्या है वो सोचो, होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, और ऐसे मनन मनन मनन करके सोचते चले जाएंगे तो आप ही एक बार पाएंगे कि सब प्रश्न के हल, सब प्रश्न के उत्तर मेरे भीतर से ही निकलते जाएंगे, और मन शुद्ध होके, शांत होके, बुद्धि समाहित हो जाएगी कि अहम के सिवा कोई बचता ही नहीं है, मन का उपयोग कैसे करना है, मन तो चलनी है, मन तो चलनी है, उसे क्या चलना है, हम लोग किसको चलते हैं ये मन से, तो किसको छानते हैं, तो भाई कोई व्यक्ति को छान लेते हैं कि ये मेरी और ये पराई, ये मुझे चाहिए ये मुझे नहीं चाहिए, तो अब क्या छानना है, भाई
अब ये छलनी से मैं ये छानूंगी कि अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है। अनात्मा अनात्मा के विचार को छान दो, उसे नीचे गिर जाने दो, और जो आत्म तत्व के विचार है वो वैसे भी निकलने नहीं वाले हैं छलनी में से। क्यों? क्योंकि सब जगह वही है, वो निकलेगा कैसे? वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता। आत्मा जो है वो सब जगह है, मेरे भीतर अहम वृत्ति से है। ये बराबर ख्याल रखना। तो मेरे भीतर आत्मे की जो अभिव्यक्ति है, पूर्ण है, वो अहम वृत्ति से है। अरे भाई, आत्मा सब जगह है तो सब जगह सरिता ही रहना चाहिए। अभिव्यक्ति मुझ में अहम है तो ये टेबल में भी अहम रहनी चाहिए। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति का जो विषय जो है, जो पदार्थ अभिव्यक्ति का है, वो मर्यादित है, वो सीमित है। अभिव्यक्ति का विषय क्या है? मुझ में जो अभिव्यक्ति होती है वो कहाँ से होती है? अभिव्यक्ति का करण क्या है मेरे भीतर? तो बोले अंतकरण। हाँ, चिदाभास शब्द सुना होगा ना? ये चिदाभास जो है, ये जो अंतकरण जो है, उसमें अहम की अभिव्यक्ति होती है। तो ये जो करण है, देखिए, अहम तत्व आत्मा जो है वो अमर्यादित है, ठीक है? आत्मा सब जगह है, उसको आप कहीं भी बांध नहीं सकते। पर उसको देखेंगे कहाँ से? अच्छे से अच्छा करण मेरे ये शरीर में कहाँ है? शरीर मन बुद्धि में जो बेस्ट करण है वो उपनिषदों ने निकाल लिया कि भाई अंतकरण यानी शुद्ध चित्त। तो ये जो अंतकरण या चिदाभास है, उसमें जो आत्मा की बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम अभिव्यक्ति है, उसी से मैं चल सकती हूँ। तो मैक्सिमम अभिव्यक्ति क्या है? तो बोले जवाब क्या आया? अहम, अहम, ऐसा जवाब आया। तो बोले यहाँ अहम ही क्यों है? सब चीज जो है वो अहम वृत्ति से क्यों नहीं होती है? सिर्फ ये मनुष्य आकार ही अहम का अनुभव क्यों कर सकता है? क्योंकि अहम प्रत्यय जिसमें से झलक रहा है, जो माध्यम है, वो मर्यादित है, क्योंकि पंचमहाभूत का कार्य है। ये शरीर मन बुद्धि जो अंतकरण है, पंचमहाभूत का कार्य है, इसीलिए उसकी मर्यादा है। एक दृष्टांत लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर जब प्रकाश होता है तो वो प्रकाश के क्या गुण है? वो हमेशा रिफ्लेक्ट होता है, वो हमेशा परावर्तित होता है। प्रकाश का ये नियम ही है कि प्रकाश का किरण यहाँ आया तो वो परावर्तित हो ही गया। अब भी हम बैठे हैं ना, तो हमारा जो पूरा प्रतिबिंब है वो यहाँ गिरता ही है। ये टेबल पे भी मैं दिख रही हूँ, आप भी ये जमीन पे दिख रहे हैं, पर क्या है? नीचे की जो जमीन है, नीचे का जो माध्यम है, उसकी मर्यादा क्या है कि वो परावर्तित नहीं कर सकता। अभी आप ये हटा देंगे चादर और मार्बल होगा और मिरर फिनिश होगा तो अभिव्यक्ति होगी। क्यों? क्योंकि माध्यम मर्यादा, जो माध्यम है उसकी क्वालिटी बदल गई। अच्छा, फिर आप ग्लास लगा देंगे, ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, आप मिरर लगा देंगे तो, आप मिरर लगा देंगे तो 100% रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तित होगा। पर अभी आप मुझे ये बताइए कि मिरर की मर्यादा क्या है? जो मिरर में दिख रहा है, जो मिरर बता रहा है, वो क्या है? अंतिम तो प्रतिबिंब ही है। वो आप है तो भी आप नहीं है, ये माध्यम की मर्यादा है ना। तो ऐसे ही मेरे भीतर जो मैक्सिमम मुझे बता रहा है कि ये परमात्मा क्या है, वो अहम है। फिर ये अहम वृत्ति भी गिर जाती है। इसीलिए आपको बताया कि जो अंतिम आपका विचार होगा ना जीवन का, वो ये होगा अहम वृत्ति। पर वो भी गलित दी ही, वो भी जो धी जो है, वो अहम बुद्धि जो है, वो भी गलित, वो भी चली जब जाएगी। यानी जब वो अंतकरण जो माध्यम है, वो माध्यम के बिना ही सिर्फ ब्रह्म का ही नित राम अनुभव होगा, वही ब्रह्म आत्म साक्षात्कार है। पर वहां तक पहुंचने की ये जो हमारी बात है, ये प्रार्थना उसी के लिए की जाती है। तो ये विश्वात्मा, यानी अब विश्व शब्द से मेरे पास जो ये शरीर मन बुद्धि का विश्व है, उससे मैं आपको जानने की चेष्टा कर रहा हूँ, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो अवांग अमनस अगोचरम है, उसे जानने की चेष्टा करना वो चेष्टा ही है, वो भी हिम्मत है। तो ये विश्वात्मा यानी जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का जो कारण है, आप ये परमात्मा जागृत अवस्था में शुभ और अशुभ कर्म जनित स्थूल भोगों को आप भुगत रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि ये जो परमात्मा विश्वात्मा है, वही स्थूल और सूक्ष्म भोग को भुगत रहा है। अगर तो अभी मुझे भुगतना क्या रहा? मैंने किया, मैंने भुगता, वो विचार भी आप कैसे कर सकते हैं? और अगर वो परमात्मा ही सब कुछ भुगत रहा है, तो दुख जैसी कोई चीज नहीं है, सुख जैसी कोई चीज नहीं है, कोई राग नहीं है हमारे जीवन में और द्वेष नहीं है,
और अगर राग और द्वेष है, अब हमारे जीवन को लीजिए, ये तो स्टेटमेंट हो गया, आइडियल स्टेटमेंट। अब हमारे जीवन में क्या है, कहां आके अटके हैं? तो भाई राग द्वेष है, कुछ अच्छा है कुछ नहीं अच्छा है। तो अब ये जो अच्छा और नहीं अच्छा, राग और द्वेष है, उसे माइनस कर दो, और जो भोग होता है, वो जो अनुभव होता है, वो परमात्मा का है। जागृत अवस्था में यहीं ही बैठे हुए अगर परमात्मा का आपको अनुभव करना है, तो एक ही इलाज यहाँ बता दिया शंकराचार्य जी ने कि शुभ और अशुभ जो कर्म भोग रहा है वो परमात्मा है, ऐसा ही आप जान लो। तो मेरे भीतर जो परमात्मा है वो सुख को भोग रहा है, वो दुख को भोग रहा है, उससे मुझे कोई भी वास्ता नहीं है। यानी ये शरीर अध्यास जो है, शरीर भाव जो है, मैं ये शरीर हूँ, जागृत अवस्था में मैं ये अन्नमय कोष हूँ, मैं ये प्राणमय कोष हूँ, वो जो विचार जो है, वो विचार को निकालने के लिए ये प्रार्थना है जागृत अवस्था में। और दूसरे दो कोष है, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, और अंतिम में सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय कोष की बात की है। तो यहाँ मनोमय कोष में क्या करते हैं ये भगवान, तो बोले स्थूल भोगों को भोग कर स्वप्न काल में अपनी बुद्धि से परिकल्पित सूक्ष्म विषयों को सूर्य आदि बाह्य ज्योतियों का अभाव होने के कारण अपने ही प्रकाश से भोगता है। अगर जागृत अवस्था में हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कि परमात्मा सब भोग कर रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरा बनाया हुआ है, अच्छा या बुरा मेरा है, तो बोले ठीक है, स्वप्न अवस्था में आप प्रकाश कहाँ से लाए? स्वप्न अवस्था में स्वप्न दिख रहा है ना, क्या दिखा वो तो बाद में, पर दिख रहा है वही बड़ी बात है, कौन से प्रकाश में देखा आपने, वो प्रकाश उत्पन्न किया? तो बोले नहीं, वो मैंने उत्पन्न नहीं किया। अगर स्वप्न में देखने के लिए प्रकाश का माध्यम भी आप उत्पन्न नहीं कर सकते, तो स्वप्न सृष्टि में जो भी कुछ कर्म किया है वो तो आप उत्पन्न कर ही नहीं सकते हैं। स्वप्न में जो पात्र है वो कोई है जिसने उत्पन्न किया है। अगर आप रात को सुबह उठने के बाद इतना ही सोचेंगे ना कि ये क्या हो गया, ये अंदर उठ कैसे गया, कोई तो है जो ये शरीर मन बुद्धि से पर है, जो ये उठा रहा है, बस इतना भी प्रश्न, इतना ही आपको आश्चर्य हो गया, तो वो जो आश्चर्य है वो परमात्मा ही है। वो इतना पास में है, चूक जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जब आश्चर्य होता है तब हमारा ध्यान दूसरे की तरफ हो जाता है। ये बात जरा समझ लीजिए, क्षण क्षण में वो झलक रहा है। जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक आकार ही चाहिए। आपका पुत्र है, अमेरिका से 20 साल के बाद आता है, आप उसे 20 साल के बाद देख रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे आया, आपने उसे देखा, ठीक है, देखने बाद क्या होता है? एक क्षण के लिए भी आपको शरीर मन और बुद्धि का भाव आता है? हाँ, कोई भी सुख या दुख याद आता है? कुछ भी याद आता है? क्या होता है? वो लड़का भी आपको याद नहीं आता, वो स्तब्धता हो जाती है, वो आनंद हो जाता है, वो क्षण ही आत्म साक्षात्कार है। पर क्या हो जाता है? तब मन वो पुत्र में इतना आसक्त हो गया कि उसके मिलन से जो अंदर स्फुरित हो गया ना क्षण भर में, वो हम चूक गए। अब अनुभव करता, आपकी प्रिय चीज को जब आप मिलो, जरूरी नहीं कि मूर्ति के साथ मिलो, जरूरी नहीं कि आपको जो भी अच्छा लगे उसी के साथ मिलो, जो भी प्रिय लगे, जिसको देख के, जिसको सुन के, जिसको विचार करके आ हो जाता है, एक क्षण के लिए हम रुक जाते हैं, शब्द हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आश्चर्यमय हो जाते हैं, वही वो परमात्मा झलक रहा है। अब रोक दीजिए अपने आप को, स्टॉप देयर, और चख लीजिए ये स्वाद, हमारा इतना ही काम है, एक क्षण के लिए आप चख। और ये तो अनुभव आपको रोज हो रहे हैं ना। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसे कोई व्यक्ति, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता है। कोई अच्छा नहीं लगता है अगर आप ऐसा कहेंगे, किसी के फोटोग्राफ को देख के मुझे आनंद ही नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, ये बात खत्म हो गई। अब आप बोलो कि मैं क्या करूं, ठीक है, आप सुबह उठते तो है ना, रात को सो के जब सुबह उठते हैं, जब आंख पहले खुलती ही है, आंख खुलने से वो ही क्षण में जो आप है वो नित्यराम, वो परमात्मा का स्वरूप है। आपकी मन की स्थिति, निर्विचार अवस्था, जब आप आंख खुलती है, इतना ही अलर्ट हो जाइए कि मुझे क्या हो रहा है,
वो परमात्मा का स्वरूप है। आप सुषुप्ति में वहां से डूब के आते हैं, डूब के आते हैं। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है वो ये उपनिषद आपको बताएगा। तो अगर कोई भी प्रिय या अप्रिय चीज को देख के कुछ भी सुख दुख नहीं हो रहा है तो आप सुषुप्ति अवस्था में सुबह जब उठ के जो साइलेंस, जो शांति का अनुभव होता है, कहने का तात्पर्य आपको हमें इतना ही बताना है कि वो परमात्मा का जो अनुभव है, वो परमात्मा का जो फीलिंग जो है, वो आश्चर्य जो है आपके भीतर है। आप सजाग होके रुक के वो ही बारे में सोचिए। और इसीलिए विषय वासना राग द्वेष से मुक्त होने का हम बार बार हजारों बार यहाँ से कहते हैं, इसीलिए कि ध्यान उसमें है ना। पहले ही उठ के, अभी क्या, अभी मोबाइल आ गए तो उसमें रिमाइंडर डाल देते हैं कि सुबह उठ के मुझे यह याद कराना, यह याद कराना। अरे ये कोई बात हो गई? उठने के बाद आराम से सब याद कीजिए, काम अपना पूरे दिन में जो करना है वो करिए, पर सुबह एक क्षण के लिए अपने स्वात्मा का आनंद, वो स्वाद चख लीजिए। तो ये सुषुप्ति अवस्था में धीरे धीरे उन सभी को अपने में स्थापित कर, संपूर्ण विशेषों को छोड़कर निर्गुण रूप से स्थित हो जाता है वह तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे। ओहो, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में अलग अलग प्रकार के भोग भोगते हुए अपने आप में ही जो स्थित हो जाता है वो तुरीय परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। और अब ये तुरीय परमात्मा कौन है, उसका ये तुरीय परमात्मा को जानने का उपाय क्या है ये उपनिषद में, तो बोले ओमकार ही यहाँ परमात्मा के आत्म साक्षात्कार का उपाय रूप जाना गया है, माना गया है। क्यों? उसकी बात अब मंत्र में प्रवेश करके शंकराचार्य जी अपने भाष्य में शुरू कर रहे हैं।

0: यह अक्षर ही सब कुछ है। इतना बता दिया कि ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। सब याने इदगम, इदम याने ये करके जो भी निर्देशनीय है, याने सब नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच जो है वो सब ओम है। ठीक है, नाम रूपात्मक प्रपंच ओम है, पर ये ओम यहाँ है। ओम इज इक्वल टू ये, यानी पूरा जगत हम सब आ गए, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से अन्नाद पुरुष तक के ये सब पूरा संगात आ गया। इतना ही नहीं कहा है, ओम अगर यही है तो क्या हो गया, अनात्म कोटि में आ जाएगा, असत कोटि में आ जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, हाँ जड़ हो जाएगा। पर यहाँ क्या कहा है कि ओम ये तो है, पर क्या है, ओम इति एतत् अक्षरम। ओहो हो, अक्षर यहाँ दूसरा इज इक्वल टू लगा दिया। हाँ, यहाँ दूसरा इज इक्वल टू लगा के क्या किया, क्या कहा, अक्षरम। अब ये क्या है, ये आपको ऐसे बताते हैं कि 1+1 इज इक्वल टू 2 और 4-2 इज इक्वल टू 2, ऐसा बताया। तो ये अक्षर है, ओम ही अक्षर है, ओम ही ये जगत है। यानी भाई करना क्या है, आपका ये कहने का, शास्त्र का ये कहने का उद्देश्य क्या है वो आप बता दीजिए। उद्देश्य बता देंगे तो ही हमारा विचार हम उस पे कर सकेंगे। तो भाई उद्देश्य ऐसा ही है कि ये जो जगत जो है, ये सर्वात्मक जो जगत चराचर फैला हुआ है, वो आत्मा ही है, उससे आत्मा की, आत्मा का अभेद ऐक्य सिद्ध करना शास्त्र का प्रयोजन है। अब शास्त्र आपके पास से क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सचराचर जो जगत है वो सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा आपको बताना है। अब वो ओमकार के माध्यम से बताते हैं, पर ये कोई ओमकार आर्बिट्री है? जब आप गणित पढ़ते हैं तो गणित में सपोज आप मान लीजिए कि अ की कीमत, ए की कीमत इतनी है, और फिर पूरा डेरिवेशन आप करेंगे तो जवाब आ जाएगा और ए उड़ जाएगा। क्या ओमकार ऐसे उड़ जाता है? ओमकार क्या ऐसा कोई आर्बिट्ररी वर्ड है? तो बोले नहीं, ओमकार का यहाँ ऐसा उपयोग नहीं है।
1: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ओम
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

नमः ओम मधुरी कोविधिशक्रमुख्य चैलेरपि निगमार्चित पाद पद्मकाग नमः ओम मधुरसफराक्षी सहचराग नमः ओम मधुमधनदक दूरचरणाग नमः ओम मधुकृते नमः ओम मधुरसंभाषणाग नमः ओम मधवे नमः ओम मधुराधिपाग नमः ओम

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विशेष संत प्रवचन माला कार्यक्रम का आज से आरंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। कवि प्रेमपुरी आश्रम आयोजित संत प्रवचन माला के अंतर्गत कवि प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस वर्ष गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी की रचना भगवान शिव के प्रति अपनी भावनात्मक भक्ति से ओतप्रोत यह शिवानंद लहरी, जैसे कि इसका नाम है शिवानंद लहर। आजकल चौमासा में समुद्र में लहर चल रहे हैं, तरंग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। विशेष करके आजकल के जो आधुनिक युवा युवती उस लहर का बड़ा आनंद ले रहे हैं। हम जैसे बूढ़े तो घबरा जाते हैं, पानी के छींटे से भी हमको खांसी जुकाम अनेक रोग आदि व्याधि आ जाते हैं, इसलिए हम बचना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं युवा युवती खूब आनंद लेते हैं उसका। हम वृद्धों के लिए प्रेमपुरी आश्रम में ये शिवानंद लहर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सौ सौ श्लोकों का ये लहर, ये तरंग, इसका हम मुमुक्षु भगवान के भक्त भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य से इसका आरंभ किया गया है। भक्ति में भाव प्रदान होता है, भक्ति में तर्क और बुद्धि का बहुत कम योग उपयोग होता है। भक्ति में भावना से संबंध है, भाव प्रदान है। इसलिए किसी संत ने कहा, प्रार्थना भले ही शब्द शून्य हो लेकिन भाव शून्य नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना में शब्दों का महत्व बहुत कम है, लेकिन कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हुए भाव से रहित हो जाते हैं, केवल शब्दों के चक्कर में पड़ते रहते हैं। शब्दों के साथ भावना यदि जुड़ी हुई हो तो प्रार्थना सही होता है। तो मुझे लगता है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस शिवानंद लहरी में शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, लेकिन इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी भावना किस तरह प्रस्तुत किया है, ये बात शिवानंद लहरी के प्रसंग से हमें जानने को मिलता है। जैसे कि शिवानंद लहरी में 100 श्लोक हैं, कुछ कुछ श्लोक शिवानंद लहरी के इतने महत्वपूर्ण हैं, वह हमारे हृदय को छू जाते हैं। विगत 3 साल तक

0: हमने इसकी व्याख्या लगातार करते आ रहे हैं और हमारा लक्ष्य रहेगा कि इस साल इसको पूरा करेंगे। गत वर्ष हम अंतिम प्रवचन के लिए हमने 66वां श्लोक का प्रयोग किया था। नियमानुसार इस साल हम 67वां श्लोक से आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले 66वें श्लोक का वो निरंतरता बनी रहे, आपको स्मरण में आ जाए तो 66 श्लोक का भाव क्या है और उस भाव से 67वें श्लोक का संबंध क्या है, इसके लिए हम पहले अभ्यास कराएंगे आपको। शंकराचार्य जी ने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है इस स्तोत्र की रचना में। ये 67वां श्लोक आर्य छंद का प्रयोग किया। बहुविध परितोष बाष्प पूर स्फुर पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानां परम सदाशिव भावनां प्रपद्ये। इसको अलग अलग पद का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। दूसरा श्लोक है 68वां। अमितमुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमा वसंतिम सदय पशुपते सुपुण्य पाकाम मम परिपालय भक्ति धेनु मेकाम जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसितुं सुलभ प्रसन्न मूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राससे करोस्ति। इन श्लोकों में शंकराचार्य जी ने श्लोकों के द्वारा शंकराचार्य जी ने जो भाव व्यक्त किया है उसकी व्याख्या करते हैं। पिछले साल का अंतिम श्लोक 66वां श्लोक, हालांकि गत वर्ष हमने इस पर बहुत व्याख्या की, 1.5 घंटे तक इस श्लोक की व्याख्या की थी। क्रीडार्थं सृजसि प्रपंचमखिलं क्रीडा मृगास्ते जन यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मत्स्यष्टितं निश्चितं तस्मान् मामकरक्षणं पशुपति कर्तव्यमेव त्वया। परमात्मा अलौकिक पुरुष है, इसके बावजूद भी शंकराचार्य जी जब उनकी स्तुति करते हैं तो मानो कि वो एक लौकिक पुरुष है। लोक व्यवहार में व्यक्ति आनंद के लिए बहुत कुछ करता है। हालांकि तमाम श्रुतियों ने परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा है। भगवान शिव स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद जिसका स्वरूप हो उसे आनंदित होने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए? मिश्री स्वयं मधुर स्वरूप है, मीठा है, मधुर है। मिश्री को मीठा होने के लिए किसी अन्य का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जलेबी स्वयं मधुर स्वरूप नहीं है उसके। पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने इसका संकेत किया। जलेबी जब बनाया जाता है, मैदे को भिजाते हैं, एक दो दिन पहले उसको खमीर बनाते हैं, फिर उसको तेल में पकाते हैं, लेकिन मधुर नहीं होता है, मीठा नहीं होता है। तेल में पका हुआ जलेबी मीठा नहीं होता है। और जलेबी को मीठा करने के लिए मिश्री का यानी चीनी का आश्रय लेना पड़ता है। बेसन का जब पकौड़ा आप पकाते हो तो वह नमकीन नहीं होता है। वो पकौड़े को नमकीन होने के लिए नमक का आश्रय लेना पड़ता है। जलेबी को मधुर होने के लिए चीनी का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन नमक को नमकीन होने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ेगा? किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, खुद नमकीन है। चीनी को मधुर होने के लिए किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, चीनी खुद। तुम हम लौकिक पुरुषों को आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि हम लौकिक पुरुष में वह आनंद स्वरूपता अनुभव में नहीं आ रहा है। हालांकि वेदांत की प्रक्रिया से वो हमारा स्वरूप है, अपना ही स्वरूप होते हुए भी प्रातःकालीन प्रवचन पंचदशी के प्रवचन में आप लोगों ने सुना, प्रतिबंधक के चलते उसका अनुभव नहीं हो पाता। जब तक वो प्रतिबंधक नहीं हटेगा तब तक उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अन्य का आश्रय लेना पड़ता है। तो हजार विकल्प हम लोगों ने खोज ली है। लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेते हैं और उसके लिए अन्य के रूप में हजार विकल्प खोजिए। भगवान शिव को कोई विकल्प खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन मानो कि वो हमसे मिल रहे हैं, वो अलौकिक पुरुष होते हुए भी मानो कि वो हमारी तरह लौकिक पुरुष की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं। तो जिस तरह लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए क्रीड़ा करता है, खेल खेलता है, और जो खेल खेलता है वह साधन सापेक्ष है, बिना साधन का तो खेल नहीं पाएगा। उन अनेक प्रकार के साधनों का निर्माण करता है, उसका निर्माता भी वही है, प्रयोगकर्ता भी वही है और उसका उपभोक्ता भी वही है। शंकराचार्य जी उनको कह रहे, भगवान शिव को कह रहे, हे शिव, संभो या संबोधन है, दो संबोधन यहां शिव जी के लिए शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है। पहला संबोधन है संभो और दूसरा संबोधन है पशुपति। पशुपति संबोधन में पशुपति, शंभु संबोधन में शंभो। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचम अखिलम, अखिलम प्रपंचम, पांच का खेल, पांच वस्तु को उपादान कारण के रूप में लेकर और उसी के पंचीकरण अपंचीकरण आदि के द्वारा समस्त स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों की रचना की। अपंचीकृत पंचों से सूक्ष्म जगत की और पंचीकृत पंचों से स्थूल जगत की रचना परमात्मा ने की है, इसीलिए इस जगत का, स्थूल और सूक्ष्म उभय जगत का नाम है प्रपंच। श्री जैसी अखिलम प्रपंचम श्री जैसी, आपने इसकी रचना की है, आपने इसकी सृष्टि की है, इस प्रपंच को आपने ही बनाया है। किस लिए बनाया है? बनाने का प्रयोजन क्रीडार्थम, मैं इस संसार में खेलूं, क्रीडार्थम।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Bolo Satchidanand Bhagwan ki jai. Satghan Chidghan Anandghan. Kalyana Gunagana Nilay Avyakta Vnashe Sarveshwar Jagat Niyanta Jagdadhar Karuna Varunalay. Prabhu ki Anant Asim Ahetu ki Kripa ke Saath. परात्पर परब्रह्म परमात्मा शुद्ध निष्कल ब्रह्म सनातन ऐसे परम शिव की महिमा बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान शिव, शिव नाम परम पवित्र है। इस परम पवित्र पावन नाम के स्मरण से हमारा जीवन पवित्र बनता है। भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्र कहते हैं दो इंद्रियां हैं जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है, एक नेत्र और दूसरे स्रोत, आंखों से और कानों से। नेत्र भगवान के दर्शन करते हैं, और दर्शन करते हुए आपने देखा होगा नेत्र बंद करते हैं। जो भगवान की पवित्र पुण्यमय मूर्ति हम विग्रह के रूप में सामने देखते हैं, ये भगवान का विग्रह शरीर है। इस शरीर को नेत्र के द्वारा ज्यों का त्यों हम हृदय में लाने की कोशिश करते हैं और उसे तब तक देखते हैं जब तक सामने ज्यों की त्यों छवि हमारे हृदय में न समा जाए और हृदय में नेत्रों के द्वारा भगवान को बसा करके और फिर हम वापस लौटते हैं अपने गृह काज के लिए। और ये क्रिया कब होती है? बोले रोज रोज होती है। रोज रोज मंदिर जाते हैं, रोज रोज संतों के दर्शन करते हैं। इसका लाभ क्या है? गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। प्रभु, आपके दर्शन से पाप नष्ट होते। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यम, ये आगता सुख संपत्ति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो, हमारे पाप दुख दरिद्र नष्ट हो, पुण्योहम तव दर्शनात्। इससे, इस दर्शन से जो पुण्यार्चित हमने किया, पुण्य की प्राप्ति की, उस पुण्य के फल स्वरूप हमें ये फल प्राप्त हुआ। इस फल को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं और नेत्र के द्वारा उन्हें अपने हृदय में बसाते हैं। ये पुण्य मिलता है तीर्थ में जाने का, दर्शन करने का। पर याद रखना, ये पुण्य अल्प है। ये जो पुण्य है, जो पुण्य हमें प्राप्त हुआ, ये दर्शनों से प्राप्त हुआ, और पुण्य क्षीण भी होता है, खत्म भी होता है। दूसरा भगवान का वाणमय शरीर है, वो शरीर भगवान का, भगवान हमारे हृदय में आते हैं, बोले किसके द्वारा? कानों के द्वारा। वाणमय शरीर भगवान का शब्द है, शब्द के माध्यम से। एक एक शब्द करके जब अक्षर से हम सुनते हैं तो शब्द के साथ भगवान का शरीर हमारे हृदय में प्रवेश करता है धीरे धीरे धीरे धीरे। इसीलिए बार बार हमें कथा श्रवण की, पुण्य श्रवण की, कीर्ति श्रवण की, यश श्रवण की, महिमा श्रवण की, मंत्र श्रवण की हमारे को आवश्यकता पड़ती है। ये भगवान का शब्द वाणमय शरीर है। इस मांगमय शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है और इसका जो लाभ है, बोलिए परम लाभ को देने वाला है, अल्प लाभ नहीं, परम लाभ। क्योंकि मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है, अर्थात मंत्र से, शब्द से। जो मन हमारा अन्यत्र चला गया है, जो मन हमसे दूर निकल गया है, कहाँ गया? बोले यतो यतो मन तत्र तत्र प्रपंच, जहां जहां मन गया वहीं वहीं तो संसार है। और कभी संसार का सार क्या है, आपने ये बात सोची? जहां भी ये मन गया उस असारता में सार क्या है? अब रोज श्लोक बोलते हैं,

0: हारम। इस संसार का जो सार है वो क्या है? संसार सारम। संसार सार तो वही है जिनके गले में सर्पों की माला है, भुजेंद्र हारम, अर्थात जो नागों की माला पहने हुए हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, पंचाक्षर है ना, ये भगवान संशिव ही इस संसार का सार है। सार तत्व शिव है, असार संसार का सार केवल एकमात्र सनातन शिव है। तो अपना मन जो संसार में चला गया है उससे निकालकर सार लेने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोले शब्द की। तो शब्दों में जो ये शिवाक्षर है, जिसके लिए कल मैंने आपको कहा था शिव पंचाक्षर मंत्र है, इस मंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता ये है कि ये मंत्र और मंत्र जितने भी आए हैं वेद में, वो सारे मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ में है, उपनिषद में है, उपनिषदों के मंत्र हैं। ब्राह्मण क्योंकि वेद का भाग है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ग्रंथों में है। परंतु ये ओम नमः शिवाय संहिता भाग है, रुद्र संहिता, रुद्री पाठ जो आप लोग करते हैं, रुद्र संहिता यजुर्वेद में जो संहिता का भाग है उस भाग में ये मंत्र है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय शिवतराय च। भगवान नमः शिवाय ये जो पंचाक्षर है ये संहिता भाग में है, इसलिए भगवान शिव के विशेष प्रिय नाम है नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय भगवान इस मंत्र में बड़ी ताकत है, अर्थात मंत्र में ताकत है कहने का भी सीधा सीधा सा अर्थ है, शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा कभी गंभीरता से सोचो, हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और हम एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। ये पास लाने वाला और दूर करने वाला क्या है? शब्द की ताकत। एक शब्द ने दूर बैठे हुए को पास लाकर बिल्कुल आपको सटा के बिठा दिया, और एक शब्द ने बिल्कुल तुम्हारे साथ बैठे हुए को हटाकर दूर कर दिया। ये ताकत किसकी है? शब्द की ताकत। शब्द की शक्ति सर्वत्र अंतर बाहर सब जगह व्याप्त दिखाई पड़ती है। शब्द शक्ति नित्य है शाश्वत, इसीलिए इसको नाद ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म। ऐसे शब्द ब्रह्म के लिए साथ, शब्द के साथ जब हम अर्थ सहित, क्योंकि शब्द के में शब्द से अर्थ कभी अलग नहीं होता, अर्थ को ध्यान में रखते हुए, अर्थ को हृदय में लाकर शब्द जब अंतःकरण में उतरता है तो धीरे धीरे जो मन हमारा बहिर्मुख हो गया है उस बहिर्मुख मन को अपने भीतर अपने अंतर्मुख करने के लिए मंत्र बहुत बड़ी ताकत है। और इन मंत्रों में ये पंचाक्षर मंत्र जिसमें पहला अक्षर है नौ, एकाक्षरी ब्रह्म, द्वयाक्षरी ब्रह्म, नौ जिसे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय कहा गया है। ये नाग जो नागेंद्र है, नाग तीन शब्द है ना ओ ग, और वैसे उससे पूर्व शब्द आता है ओम, ओम में तीन मात्राएं अ उ म और उसके साथ अर्धबिंदु, बिंदु संयुक्त, बिंदु से युक्त होकर ये जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं के साथ यदि हम ओमाक्षर का ध्यान करते हैं और ओम के साथ भगवान के इस सुंदर मंत्र का, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, तो नौ जो शब्द है एकाक्षरी ब्रह्म, तो केवल प्रणव है, केवल ओम अपने आप में ब्रह्म है। उसके साथ किसी एक केवल केवल एकाक्षर का हम जप करें तो प्रणव का जप करें, और प्रणव जप के साथ नमः शिवाय, और नमः शिवाय से नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय से दिगंबराय तस्मे नकाराय नमः शिवाय। नागों की माल नागेंद्र हाराय, नाग दो सर्फ जिसे हम कहते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो जमीन पर चलते हैं उन्हें सर्फ कहते हैं, और जो भूमि के अंदर रहते हैं उन्हें नाग कहते हैं। नाग देव योनि में है, अर्थात नागों की विशेषता है। विशेषता क्या है? बोले नाग के लिए ऐसा ग्रंथकार कहते हैं कि नाग जिन्हें भगवान शिव ने अपने गले में नागेंद्र हाराय आभूषण बना करके धारण किया हुआ, जिनके गले में सर्प है, नाग हैं, जिनके शरीर पर नाग लिपटे हुए हैं, नागों के आभूषणों से जो सुशोभित हैं, वो शिव कैसे हैं? बोले ये नाग क्या है? हमारे यहाँ नाग का दर्शन शुभ दर्शन माना गया है, अच्छा दर्शन माना। यदि नाग सर्प स्वप्न में भी दिखाई दे तो वो लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला होता है। सर्प का काटना अच्छा नहीं, सर्प का देखना अच्छा है। सर्प का दर्शन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कहा है। वल्लभाचार्य जी के एक प्रसंग में मैं पढ़ रही थी भागवत के, बहुत अच्छी बात, ये मत मेरा नहीं है, ये भागवत के दसम स्कंद के 28वें अध्याय में भी भगवान ने ऐसी चर्चा की कि जिसे मैं बहुत ज्यादा स्नेह करता हूँ, बोले उसे क्या देता हूँ? धीरे धीरे धीरे धीरे उसका धन हरण कर लेता हूँ। जब उसका धन हरण कर लेता हूँ तो जब तक कोई धनवान होता है उस धनवान के पीछे सब ये मेरा जो जो कोई श्रीमानी अच्छा धन संपत्तिमान व्यक्ति होगा ना, दूर का जिसका कुछ लेना देना भी नहीं होगा, वो कहीं कहीं से रिश्ता निकाल के कह देगा वो अमुक आदमी मेरा ये लगता है, उसके सब स्व स्व अपने अपने अपने बन जाते हैं। और जो बेचारा बिल्कुल निर्धन हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा, कुछ पास में नहीं होगा, तो धीरे धीरे करते करते सब स्वजन संबंधी उसका सारा रिश्ता उससे समाप्त करके छोड़ करके उसको अलग करते जाएंगे। ये संसार का नियम, और ये व्यवहार में देखने को भी मिलता है। उसके साथ कोई नहीं चलते, उसे कोई नहीं अपनाता, सब उसे उससे दूर किनारा करते हैं, कहीं ये हमसे कुछ मांग न ले, कुछ ले न ले। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जब वो सबसे सबसे उसका मोह भंग होता है तो उसका मन मेरे में लगता है, और जब उसका मन मेरे में लगता है तो मैं उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूँ, संसार के बंधन से जन्म के मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। अर्थात इससे स्पष्ट ये हुआ कि भगवान कहते हैं, मतलब ऐसा मत है संत का कि देखो भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। बोले कौन प्रिय है? लक्ष्मी बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान को विष्णु को कहते हैं लक्ष्मीपति। तो अपनी प्रिय नारायण को जो प्रिय लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी दूसरों को देने के लिए वो तैयार नहीं होते। धन हरण कर लेता हूं का मतलब लक्ष्मी को मैं ले लेता हूं, माने भगवान नारायण दूसरे को लक्ष्मी देने पर प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए कहा क्या कि भगवान शिव की उपासना करने से, शंकर जी की उपासना करने से भगवान शिव क्या है, ये चंद्रचूड़ चंद्रनाथ औघड़ दानी भगवान शिव ऐसे हैं, शमशान वासी इन्हें कुछ नहीं चाहिए। भस्मंग रागाय, ये तो संसार में रहने वाले भस्म को शरीर में धारण करने वाले ये भगवान शिव जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, भगवान शिव इन्हें कुछ नहीं चाहिए। रिद्धि ले जाओ, सिद्धि ले जाओ, लक्ष्मी ले जाओ, कुछ ले जाओ, भगवान कुछ अपने पास नहीं रखते। अर्थात सुख समृद्धि के प्रदान करने वाले भगवान शिव की उपासना करने से एक लौकिक वो है कि भगवान शिव की कृपा से समृद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इन्हें कुछ चाहिए नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती के संग हुआ। गिरिराज कुमारी हैं, भगवान शिव की सेवा में संलग्न है, बहुत तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, वर के रूप में प्राप्त किया और प्राप्त करके कैलाश में जाकर माँ उमा भगवान शिव के संग निवास कर रहे हैं। भगवान शिव अपनी तपस्या में तल्लीन हैं और माँ उनकी सेवा करती हैं और शिव की आराधना करती हैं। उनकी सेवा से भगवान शिव को एक दिन प्रसन्न किया और प्रसन्न करके पार्वती की इच्छा को भगवान शिव ने जानना चाहा। भगवान शिव कहने से ने पूछा पार्वती से, तो भगवती पार्वती कहती है, उमा कहती है, प्रभु हम सदगृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन जीने के लिए तो हमें एक मकान की आवश्यकता है। पर्वत के ऊपर रहकर, वनों में रहकर तो ये जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप एक भवन निर्माण करें। आपके पास कोई भवन नहीं। माँ पार्वती के कहने पर और शिवा को प्रसन्न करने के लिए एक सुंदर सुंदर भवन निर्माण करवाया गया, देवताओं को कह करके। और मैं ये सुंदर सा भवन धनवंती से महाराज से कहकर ये वन विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर मकान बना कर दिया, भवन बनाया सुंदर, पुरी की रचना की। अब ऐसी परंपरा है कि घर बना करके घर में सबसे पहले नहीं जाना चाहिए, वहाँ पूजा करा लेनी चाहिए। अब पूजा कराने के लिए ग्रह पूजा हो, बोले ये बात पता किसे चली, विश्वरूपा पुत्र रावण को, कि भगवान शिव की गृह प्रवेश की पूजा होनी है। पूजा के लिए रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान भी है, ब्राह्मण है, और उसने भगवान शिव की पूजा कार्य को संपन्न कराने के लिए कैलाश में गया और बड़े प्रेम से ब्राह्मण ने पूजा संपन्न कराई। जब दक्षिणा देने की बारी आई तो उसकी दृष्टि उस भवन पर, उस सुंदर शिव रचित इस नगरी पर पड़ी और ब्राह्मण ने दक्षिणा देने की बात आई तो भगवान शिव से कहा, प्रभु दक्षिणा में यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो ये सुंदर भवन, ये सुंदर नगरी आप कृपा करके मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर एक क्षण भी नहीं लगाया और वो सारी की सारी, सारे का सारा भवन, ये सुंदर रची हुई जो स्वर्णमय थी, इस नगरी को भगवान शिव ने रावण को दे दिया। वही लंकापुरी थी जो सोने की बनी हुई है। तो भगवान शिव तो जी कहते हो, कहने का अर्थ ये है कि उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी, एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं हुआ। भगवान शिव ऐसे दाता हैं, ऐसे दानी हैं, जिन्हें देने में देर नहीं लगती है और आशुतोष है थोड़े में खुश होने वाले। आशुतोष शब्द का अर्थ होता है थोड़े में खुश होने वाले। थोड़े में कितने में खुश होते हैं? बोले किसी को रिझाने के लिए तो कुछ चाहिए, किसी को रिझाने के लिए कुछ चाहिए, भगवान शिव को रिझाने के लिए तो केवल एक लोटा पानी चाहिए, जो केवल जल से तृप्त हो जाए, जल से प्रसन्न हो जाए। ऐसे भगवान सदा शिव जो सर्वदानी है, सर्वदाता है, रिद्धि सिद्धि के प्रदान करने वाले हैं, सुख समृद्धि और लक्ष्मी वैभव, यश वैभव, कीर्ति के दाता हैं, ऐसे भगवान शिव हैं। इनके नाम का स्मरण करने से सर्वा संपत्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार का मत किसका है? बोले वल्लभाचार्य जी महाराज का। भगवान को देने में तो कुछ विलंब हो सकता है, क्योंकि वो लक्ष्मी जल्दी देते नहीं है, पर शंकर जी को कुछ चाहिए नहीं तो वो देने में कुछ देर लगाते नहीं है। भगवान विष्णु तो लक्ष्मी देने में सोचते हैं, क्योंकि वो प्रिया हैं, पर शिव की प्रिया नहीं है। शिव तो विरक्त हैं और अवधूत के रूप में रहने वाले। ऐसे भगवान शिव के लिए कहा, नागिंद्र हाराय त्रिलोचनाय, जिन्होंने सर्प को, अर्थात भगवान शिव के इस मंत्र में पहला शब्द नौ से है, जिससे कि सर्प आदि जिनको आभूषण के रूप में भगवान शिव ने अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। और वो शिव आखिर हैं कैसे? बोले त्रिलोचनाय, तीन नेत्र है, तीन नेत्रों वाले शिव, त्रिनेत्रधारी, सूर्य चंद्र बंदी नयन। भगवान शिव के यूं कहा गया है कि तीन वेदत्रय, तीन वेद ही विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदिर दिव्य चक्षु से, तीन वेद ही उनके ये तीन चक्षु हैं, ऋग यज साम, ये तीन वेद भगवान शिव के तीन नेत्र हैं। और ये कहा गया कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र में क्या है? बोले तीसरे नेत्र में तो भगवान शिव की अग्नि है। ये नेत्र हमेशा शिव बंद रखते हैं। कहीं भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या होगा? बोले एक बार खुला था। कब खुला था? जब कामदेव को भस्म किया था। इसमें इतनी भयंकर अग्नि है, इतनी भयंकर अग्नि है कि भगवान इस नेत्र की अग्नि में बाणासुर का पुत्र मन में सोचने लगा कि भगवान शिव को प्रसन्न करके मैं उनसे ये तीसरे नेत्र की अग्नि प्राप्त कर, और इस अग्नि को लेकर के मैं भस्मों समस्त देवताओं को पराभूत करके मैं सर्व देव सुख को प्राप्त कर लूं। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तप किया, और तप पूर्वक जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे आप ये जो तीसरे नेत्र में आपकी अग्नि है वो आग मेरे हाथ में हथेली में स्थापित कर दीजिए, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। इसे कृपा करके आप मुझे अपने हथेली में दे दीजिए। भगवान शिव ऐसे दानी है कि देने में देर नहीं करते, उन्होंने तुरंत दे दिया। भगवान शिव जब वरदान देने के लिए आए थे, प्रकट हुए थे, तो भगवती उमा भी उनके संग में थी। भगवती उमा का स्वरूप रूप देख करके ये असुर इतना मुग्ध हुआ, इतना मोहित हुआ, सोचने लगा कि शिव को समाप्त करके मैं शिव प्रिया को ग्रहण कर लूं। और ये मन में कुभाव लेकर के भगवान शिव को भस्म करने के लिए जब भगवान शिव की ओर बढ़ा तो भगवान शिव भस्मासुर को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान शिव भाग रहे हैं, और भगवान शिव को भागते हुए देख मां मन ही मन श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं और मन ही मन उसके, क्योंकि भगवान शिव ऐसे दाता हैं कि वरदान देते समय तनिक भी विचार नहीं करते, जब देने में आते हैं तो कुछ सोचते नहीं, सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए कहा ये तो अवघड़ दानी है, खुद अवघड़ है और दान कैसे करते हैं, इन समान शिव समान दानी को नाई, उनके समान दानी और कोई न हुआ है न हो सकता है। भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दिया परंतु मां ने मन ही मन स्मरण किया और भगवान श्री हरि नारायण सामने से प्रकट कर आए और अब कहने लगे बाण पुत्र तुम तो बहुत इतने श्रमित हो रहे हो, इतने तेज से भाग रहे हो, कहां जा रहे हो। कहा मैं प्रलय की अग्नि मेरे हाथ में है, शिव से मैंने वरदान प्राप्त कर लिया, अब मैं ये चाहता हूं कि इस अग्नि को लेकर के शिव को भस्म कर दो। किसकी बात कर रहे हो, वो जो जटाजूट धारण किए हुए हैं, भस्मांग में लपेटे हुए हैं, भांग धदूरा और आदि को का सेवन करने वाले, जो नशे में उन्मत्त रहते हैं, जिन्हें अपने शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, ऐसे शिव की बात पर तुमने विश्वास कर लिया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Pratyek Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Maharaj ji ke kuch chutkule bhi aapko suna de. Pehli baat Maharaj ji ka ek vakya suno. Buddha wo hai जिसका उत्साह मर गया। लाल मियां जी को देख के लगता है हमें बुढ़ा लगता हूं उनके सामने। बिल्कुल समय सर, जैसे जॉब पे आते हैं समय से आते हैं, सेवा करते हैं। बुढ़ा वो है जिसका उत्साह मर गया। महाराज जी दूसरी बात सुनाते थे, किसी ने कहा किसी को, अरे बुढ़े यहां जाओ। उन्होंने कहा जरा भाई प्रेम से बुलाया करो, भूतपूर्व युवान करके बुलाओ। जैसे भूतपूर्व शंकराचार्य होते हैं ना, आजकल वो भी लगा थे अपने नाम के बाद भूतपूर्व शंकराचार्य, वंस अपॉन अ टाइम शंकराचार्य। तो भूतपूर्व युवान करके बुलाया करो। अभी एक बुड्ढे का 100 साल पूरा हो गया तो सब लोग मना रहे थे, वो जिंदा था, बर्थडे उत्सव हुआ, तब सब लोगों ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थे और वो लोग पूछते महाराज आपको कुछ कहना है। बुड्ढा आदमी जल्दी नहीं बोलता, धीरे धीरे बोलता है, इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इतना बोला, इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। सब लोग ने बहुत ताली बजाई, जैसे हम लोग करते ना थोड़े थोड़े, हम लोग का भी उत्साह बढ़ता है, चलो ताली बजी करके, तो ताली बजाए। उन्होंने कहा मेरी बात पूरी करने दो, बीच में ताली मत बजाओ, जितने मेरे दुश्मन थे सब मर गया, मैं ही बाकी रहा हूं। आज देखो शाम को पावना हमारे गिरीशान जी का दूसरा स्वरूप देखने को मिलेगा। इतने प्रेम से महाराज जी की बधाई गाते हैं, स्वामी जी ने बहुत सुंदर सुनाया, हमको तो लगा हम वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन का लटका तो जो आ रहा है वही जानता है। एक दिन मैं गया महाराज जी के साईं के सत्संग में, तो मैं उस समय नित्य बोध था, पीला कपड़ा पहनता था, तो मुझे देख के कहने लगे, अरे पीली साड़ी वाली सखी आ जा, ऐसे बोला। मैं तो सहम गया। फिर मुझे बाद में डांटा, तेरे को अच्छा नहीं लगा? मुझे महाराज जी मुझे सखी क्यों कहा आपने? तो कहता है देखो ये भी वेदांत में गड़बड़ है, मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, अभी तक वेदांत क्या पढ़ा तू? एक तो सखी का फिर डांट भी लगाई। कभी कभी कुछ बोल देते थे, हमको भी डांटते थे, लीला जी जानते है।
4: आज स्वामी जी का दूसरा नाम पता लग गया।
3: अरे भाई आपके सामने बोलने में डर लगता है। क्या बात कर रहे थे? लेना जी डांटते थे कभी कभी। एक दिन डांटा हमको कुछ बात के लिए, मानी तो मैं कुछ बोला नहीं, मुंह मेरा मौन। गुरु जी को अगर शिक्षा करना है तो मौन हो जाना उनसे, महाराज जी कहते थे, तो मैं मौन हो गया। तो फिर कहते थे दूसरे दिन मुझे, देखो मनाने की ट्रिक उनको आती थी, मैं कुछ बोला और वो बात तो हवा में उड़ गई, तू क्यों पकड़ के बैठा है अभी तक? शब्द हुआ उड़ के चला गया, अब तक क्यों पकड़ के बैठे? एक चुटकुला महाराज जी की सुनाए, हमको आश्चर्य होता है महाराज जी क्या क्या, वृंदावन का लटका ही अलग, वहां जाके ये प्रेम विपुल वाले महाराज जी अलग और वृंदावन वाले अलग, आप याद रखना। मुंबई में तो नगर के लोग है ना, कृष्ण वृंदावन में अलग थे और द्वारका में अलग थे। द्वारका में कोई लीला नहीं है देखना,
4: नहीं किया
3: कोई लीला नहीं किया महाराज जी, सब लीला वृंदावन में की। एक गधा और एक कुत्ता दोनों मित्र थे। ये जोक सुना रहा हूं, कोई कथा नहीं है, जोक सुना रहा हूं। और गधा यार इंडिया में रहा और कुत्ता अमेरिका चला गया और वापिस आया थोड़े दिनों के बाद, वो तो हंसता कट्टा बढ़िया, और गधा बिल्कुल कांटे जैसा दुबला पतला हो गया था। तो पूछा तो ऐसे कांटा जैसे कैसे जी रहा है, मरा क्यों नहीं, कि खाने पीने नहीं मिलता है? कि एक आशा लगी इसलिए मैं जिंदा हूं। कि कौन सी आशा लगी है? कि जो मेरा मालिक है उसकी लड़की पढ़ती नहीं है, फेल होती जाती है। अब उसने कह रखा है अगर अगली बार तू फेल हो गई तो तेरी शादी इस गधे से कर दूंगी। महाराज जी का जोक सुना रहा हूं। अभी दूसरा, अभी जैसे इन्होंने सुना ना, जहां भी टच है, दो आतंकवादी जा रहे थे कहीं बॉम्ब लगाने के लिए, कार बॉम्ब, उसमें से उन्होंने एक कार में बॉम्ब लगाया। तो दूसरा पूछता है, हाथ में दो बॉम्ब थे एक लगाया, तो दूसरा पूछता है कि अगर ये बॉम्ब बीच में फूट गया हम लोग जब लगा रहे तो क्या होगा? तो दूसरा कहते चिंता क्या करता है, दूसरा बॉम्ब तो है। समझ में आया? बॉम्ब तुम लोग जाके बादाम खाओ और क्या। कभी कभी महाराज श्री मुझे सत्संग में खड़ा कर देते, चुटकुला सुनाओ। सर्वस्वामी जी याद है ना आपको, बिल्कुल ऐसे कहते थे कुछ ना कुछ चुटकुला सुनाओ। सरदार साहब को देखो, एक वेदांत में चलता है महाराज जी, अनवस्था दोष रिग्रेशन ऑफ इन्फिनिटम। जैसे हम बात करते हैं कि अगर अंडा है तो अंडा मुर्गी से आया, मुर्गी कहां से आई? अंडे से आई, अंडा कहां से आया? ये बोलते जाओ धीरे धीरे मिल जाएगा। पूरी रात बोलो मिल जाएगा। तो ये प्रश्न है, इसको क्या अनवस्था दोष, यू कांट से विच केम फर्स्ट, इन्फिनिट। ये पहले कर्म के पहले शरीर, ये भी गड़बड़ है। कर्म के बिना शरीर नहीं मिल सकता है और शरीर के बिना, तो पहला कौन सा है? ज्योतिष के पास जाते दिखाने के लिए, क्या दिखाओगे? तो सरदार को पूछा, सरदार को ये सब नहीं मालूम है, उसको सीधा पूछा, महाराज अंडा पहले कि मुर्गी? तो ये सोचता था ये बोलेगा इन्फिनिट है, ये सब बोलेगा अनवस्था दोष है। तो सरदार जी ने हंस के कहा, भाई जो भी तैयार है वो पहले ले आओ। एक दिन एयरपोर्ट में मैं महाराज जी के साथ गया, तो यहां बंबई का ही कोई भगत था, तो महाराज जी का आदत था, हम लोग कभी हाथ पकड़ते थे, स्वरूप दिया ना, ऐसी उष्मा मिलती थी, ऐसा प्रेम मिलता था महाराज जी का, बड़े प्रेम से हाथ पकड़ते थे। तो वो सज्जन ने हाथ पकड़ा तो ऐसे महाराज जी ने देख लिया, उसकी हथेली देख ली, वो तत्काल उत्सुक हो गया, क्या है महाराज जी, ये मेरे हाथ में क्या है? तो महाराज जी ने पूछा कि हाथ ने तूने हाथ बनाया कि हाथ ने तेरे को बनाया? वो बेचारा कुछ समझा नहीं क्या कह रहे हैं। ऐसे अहमदाबाद में महाराज जी स्टेशन पे बैठे थे, मैं भी महाराज जी के पास था रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने कहा महाराज जी से कि महाराज जी आप जा रहे हैं तो लोग रो रहे हैं, ये बात तो होती थी आप लोग को मालूम है, जब महाराज जी को स्टेशन जाते हैं जैसे अपना आनंद ही जा रहा है। तो मैंने कहा सब लोग रो रहे हैं, तो महाराज जी धीरे से कहते हैं देखो अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि गाड़ी 3 घंटे देर से जाएगी फिर देखो क्या होगा इन लोग का। सब दुख चला जाएगा, 1 मिनट में सब दुख चला जाएगा। मानी महाराज का वैराग्य भी ऐसा था कि कहीं किसी के ये इसमें आने वाले नहीं थे। इतना कह के आनंद उत्सव आनंद ही करना चाहिए, हैप्पी बर्थडे महाराज जी को, इसलिए आनंद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।
5: आपके लिए 20 मिनट बजा के रखा है, 3 मिनट बजाए रखे,
6: 3 मिनट का है, 20 मिनट है।
4: अत्यंत मधुर श्रद्धेय स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज ने पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव कराया सभी लोगों को।
7: मुझे स्मरण आ रहा है कि यहां 3 विभूतियां ऐसी बैठी हैं कि महाराज जी की नजरें उनको ढूंढती थी। जब महाराज जी यहां प्रेमपुरी में आते थे सत्संग के लिए तो नित्याभोज जी आए हैं या नहीं ये महाराज जी देख लेते थे। विपुल में जाते थे तो हमारी लीना बहन वहां उपस्थित है या नहीं, और वृंदावन जाते थे तो गिरीश की पढ़ाई कैसी चल रही है, उनका वजन कुछ बढ़ा है या नहीं, बहुत दुबले पतले थे और महर्षि के बहुत प्रिय। जब भी महर्षि वृंदावन जाते तो उनको जो स्नेह महर्षि का मिलता था हमें अभी तक स्मरण आता है, वो एकदम चित्र उपस्थित हो जाता है। हरिओम तत्सत। हरिओम।
4: बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे संस्मरण पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने श्रवण करा के महाराज जी की स्मृतियां दिलाई। अब अध्यक्षीय भाषण के पूर्व महाराजेश्वरी जी का जो बहुत सुंदर ग्रंथ है और सभी भक्तों में जो अत्यंत प्रिय है, जो श्री महाराज जी ने स्वयं बता करके लेखन करवाया है, जैसे सोमदत्त जी ने बताया पावन प्रसंग, वो प्रायः पूर्ण हो गया था, पुनर्मुद्रित हुआ है, उसका पुनः लोकार्पण स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज के द्वारा होगा और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण।
8: देखा चश्मा से नहीं देखे तो चश्मा उतर देना।
4: शत साहित्य ट्रस्ट की ओर से आज पूज्य महाराज श्री जी के सभी ग्रंथों पर 20% की छूट दी गई है, ऐसे हमारे ट्रस्टियों ने बताया। आप सभी लोग जरूर उसका लाभ लेंगे।
8: अभी आज लेंगे तो
4: आज
8: ज्यादा होगा ना छूट,
4: आज ज्यादा है तो 20% प्रेमपुरी की तरफ से, 20% सत्साहित की तरफ से, पूरी 40% छूट है आज के दिन।
8: देखो आज ही खरीदना,
4: आज जो भी ग्रंथ लेंगे 40% की छूट है महाराज जी के ग्रंथों पर, आप जरूर उसका लाभ ले। अब हमारे परम श्रद्धे परम विद्वान पूज्य स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज इस आनंद जयंती के पावन पर्व पर हम सभी लोगों को आनंद देंगे। परम श्रद्धे स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज।
9: हरि ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
6: परम श्रद्धेय परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी गिरिशान जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी पृथक बुद्धानंद जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी क्या चिदंबरानंद जी महाराज चिदंबरानंद

0: नहीं स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, गिरीशानंद दोनों गिरीशानंद जी है, एक गिरीशानंद सरस्वती, एक गिरीशानंद पुरी।
1: कह रहे हैं उनके धर्म पत्नी बैठी है यहीं पे।
0: वो पीछे बैठी है ना, वो हमेशा पीछे तो चलेगी ना, आगे थोड़े चलेगी। प्रभु ब्रह्म सज्जनो तथा भक्तिमती माताओं, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक आनंद उत्सव का है, एक जन्म उत्सव का है। चिदंबरानंद जी जो है ना, इनका आज जन्म तिथि, जन्म उत्सव है ना। हाँ देखा आपने, जन्म आपने माना नहीं, बड़ा आनंद आता है। आपने मृत्यु दिन माने तो नहीं, कोई नहीं माना। अभी देखो प्रसंग चला था आनंद उत्सव का, कल आनंद प्रकट क्यों नहीं होता है। श्रुति कहती है आनंदाद्येव खुले इमाने भूतानि जायन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम वहन्ति अभिशम विशन्ति आनंदम ब्रह्म, है कि नहीं। सारा संसार आनंद से उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होता, फिर आनंद क्यों नहीं मिलता। अभी स्वामी गिरिशानंद जी महाराज ने कहा हमारे बगल में बैठा था रसगुल्ला आनंद, परंतु इनका नाम ना लेने से रसगुल्ला आनंद नाराज होकर पीछे गया, चला गया, उधर चला गया, क्यों हमारा नाम तो लिया नहीं उन्होंने, रसगुल्ला आनंद लिया नहीं, पर उन्होंने आनंद का नाम लिया। कौन इन्होंने? प्रत्येक बुद्धानंद जी ने बहुत से आनंदों का नाम लिया, आखिर में दिया कि नहीं, आनंद मनाया कि नहीं। चुटकी ले जो बताया है ऐसे क्या है, आप ना लो, गिरिशानंद जी बोला आप ना लो, मैं तो अपने लूंगा, अपने आनंद का स्वरूप आपने बताऊंगा जी। तो उन्होंने रसगुल्ला आनंद का नाम नहीं लिया, और एक आनंद का नाम लिया, आपको पता है, है? तो देखिए सारे संसार आनंद से उत्पन्न होता है, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होता है, आनंद नाम है ब्रह्म का, ब्रह्म का नाम है अखंड सच्चिदानंद रूप, ब्रह्म है। तो यदि ब्रह्म के आनंद का आपको अनुभव नहीं होता, ना होने का कारण क्या है, प्रागट्य नहीं होने का कारण क्या है, आकाश में सूर्य है अभी देखने में नहीं आ रहा, क्या कारण है? अरे सूर्य को ढक दिया किसी ने। ऐसे आपका स्वरूप जो आनंद है, उस आनंद का प्रागट्य क्यों नहीं हो रहा है? जब आपका स्वरूप ही आनंद है, परंतु बाहर जब सुषुप्ति अवस्था से जब बाहर आते हैं तो आप कहते हो क्या, मैं आनंद से सोया। जिस आनंद से आपने सुषुप्ति अवस्था में सोया था, वो अवस्था आपका जागृत में भी है। आप है कि नहीं जागृत में? जागृत में आप जो है वो सुषुप्ति में आप नहीं थे, और सुषुप्ति में जो आप है वो जागृत में नहीं है। हाँ? जो सुषुप्ति का अनुभव करने वाला, स्वप्न का अनुभव करने वाला आनंद का, और जागृत में भी वही है, फिर भी क्यों नहीं होता है आनंद की अनुभूति? तो शास्त्रकार कहते आनंद की प्राप्ति का आशा छोड़ दो। जब आनंद की प्राप्ति की आशा छोड़ दोगे आनंद मिल जाएगा, और जब तुम आनंद को ढूंढते चलोगे ना तो आनंद नहीं मिलेगा, याद रखना। ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, और ढूंढना छोड़ दोगे तो देखो तो आनंद साक्षात है। ऐसे आनंद की प्राप्ति कैसे होगा? शास्त्रकार कहते हैं तुमने जो है ना सत्संग किया कि नहीं। सत्संग जीवन की धारा को बदल देता है, सत्संग जीवन की धारा को बदल देता है। ये सत्संग जीवन की क्या धारा बदल देता है?

0: சதாம் சங்கோஹி பேஷஜம், சதாம் சங்கோஹி பேஷஜம், சஜ்ஜனோ கா சங்க ஓஷதி ஹை, கிஸ்கி ஓஷதி ஹை, பாபரோக்கா ஓஷதி ஹை, சங்சார் ரூபீ ஜோ ரோக ஹை, பாபா ரூபி ஜோ ரோக ஹை, ஏ ரோக கா ஓஷதி கியா ஹை, சஜ்ஜனோ கா சங்க. तो सताम संगो ही भेषजम, अभी आपने यहां सुना है मधुसूदन जी से बोले थे कि हमारा जो जीवन है सत्संग से बदल गया, जीवन के धारा को सत्संग बदल देता है, याद रखना, जीवन की धारा को यदि बदलना है तो आप सत्संग करो, अब वो सत्संग नहीं किया तो क्या संग होगा, कुसंग होगा, असत्संग होगा, याद रखना। तो सत्संग के जो सज्जनों का जो संग है, महापुरुषों का जो संग है, केवल महापुरुष संग ऐसा नहीं समझना, सत्संग है। तो सत्संग जीवन की धारा को बदल देता, मतलब अनादि काल से जो हमारा जीवन की धारा संसार की तरफ बह रहा है वो धारा को बदल करके ऊपर की तरफ ले जाएगा, ऊपर समझ में ना, ऊपर ऊपर क्या है,
1: पांचवा माला
0: पांचवा माला ठीक है, क्या वहां रसगुल्ला मिलेगा, पांचवा माला में मिलेगा, देखो ऊपर की तरफ जाएगा जीवन की धारा, आने बात है। जैसे गंगा गंगा आदि नदियों का प्रवाह अनादिकाल से निशि की तरफ जाते, समुद्र की तरफ जाते हैं, वो धारा को बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बांध देना पड़ेगा और नहर खोदना पड़ेगा, बांध देने से काम नहीं चलेगा, क्यों, बांध को तोड़ देगा प्रवाह, फिर एक नहर खोदना पड़ेगा, जब नहर खोदोगे तो धारा बदल जाएगा, ठीक इसी प्रकार अनादि काल से जो हमारे जीवन की धारा संसार की तरफ जा रहा है वो धारा को बदलना पड़ेगा, धारा को बदल करके ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा, उधर कहां है, ऊर्ध्वमूल भगवान की तरफ ले जाना पड़ेगा, भगवान ऊपर रहता है, क्यों, जब झगड़ा होते ना हाथ उठाकर क्या बोलती है ऊपर वाला जानता, आप बोलते हैं कि नहीं, अरे भाई कुछ भी जाते ऊपर वाला तो जानता है, नहीं वो एक एक, एक चुटकुला सुना देता हूं, हमारे वो प्रत्येक उदाहरण है, एक बुढ़िया माई है, बुढ़िया माई, उसने दूध पाक बनाया दीपावली के समय, सायंकाल के समय दूध पाक बना करके अपने खटिया के नीचे रखा और सो गया तो नींद आ गई, बुढ़िया के मां में दांत नहीं था, दांत नहीं होने से कैसा होता जी, ओठ जब सो जाते हैं ना भीतर बाहर क्या होता है, फू फू कर रहता है, वोट कैसा करता है देख लेना किसी सोया हुआ, इतना में दो चोर आ गया, चोर सामान ढूंढते ढूंढते ढूंढते एक ने कहा देखो खीर बना करके रखे नीचे, हाँ खीर बना करके रखे नीचे खा लो, दूसरा ने कहा ठीक है पहले खीर खाओ फिर काम दूसरा करो, पेट पूजा करो पहले, तो खाने गया था खीर अभी गर्म थी, ठंडा नहीं हुई थी, तो बुढ़िया सोया था ऐसे हाथ फैला करके सोचे फूकर रहा था, अरे भाई बुढ़िया माँ कहती है बेटा मैं बड़ा कष्ट से खीर बनाई हूं और थोड़ा खीर मेरे को देना है, अकेला अकेला मत खाना, मानो ये कह रही हो, तो दूसरा ने उठा करके गरम गरम खीर उसके मुंह में डाल दिया, अरे मर गई रे मर गई मर गई मर गई, चिल्ला उठी, तो दोनों चोर एक ऊपर जाकर कहीं छिप गया एक नीचे कहीं छिप गया, इतना में अगल बगल के आदमी आ गए, क्या हुआ मैया तू अकेली रहती है क्या हुआ कैसे मर गई क्या हुआ क्यों चिल्लाती है, बोले देख बेटा किसी ने मेरे मुंह में गरम गरम खीर डाल दिया, अरे सायंकाल का समय है किसने तेरे के मुंह में खीर डालेगा, अरे कोई नहीं आया यहां, तो ढूंढता ढांढता देखा कोई नहीं है, वो तो छिप गया था, जब बुढ़िया को डांटने लगे सब तो बुढ़िया कहने लगे, बेटा मैं झूठ बोलू ना, ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला जानता है। तो ऊपर जो छिपा हुआ था ना, उसने सो मेरे को देख लिया। अरे वहां से बोल पड़ा, मैया ऊपर वाला नहीं जानते, नीचे वाला भी जानता है, नीचे वाला भी जानता है। समझे कि नहीं? ऐसे ही समझ लेना, हम लोग तो ऊपर की तरफ ले जाना चाहते ना, ऊपर वाला परमात्मा कहाँ है? सातवां आसमान में, मुसलमानों के जैसे है ना, मुसलमान सातवां आसमान में मानता है खुदा को, और हम क्या मानते?
1: सर्वत्र
0: समूहम सर्वभूतेषु न मैं देशोस्ते न प्रिया है ना बात। भगवान सब में समरूप में रहता है, सब में। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, भ्रमयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढानि माया, सब में रहता है हमारे दृष्टि से, सनातनियों के दृष्टि से। तो इसीलिए मुसलमानों के ईश्वर से कहाँ रहता है? वो मौलवी है ना, मौलवी हज करके आया तो रोजा रख रहा था, तो उनको उनको प्यास लगी। मुसलमान जब चार बजे खाते हैं ना, ठोस ठोस करके खाता है, गोश्त खाता है, ऐसा खाएगा दिन भर और भूख नहीं लगे, पर उसको प्यास लगता है। जब प्यास लगी सोचा पानी कहाँ पीऊं, दुकान में तब पीने देगा नहीं, कहे मौलवी होकर के हजी होकर क्यों पानी पीने, खता कर रहे हो, रोजा को खता कर रहे हो, कर रहे हो तो क्या करूं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी युक्ति लगा लेता हूं। तो मौलवी ने युक्ति लगाया, घर गया, बीबी से कहा, बीबी मेरा लुंगी तो दे। बोले क्या करोगे? बोले आज दरिया में गोसल करूंगा। बोले रोज घर में गोसल, गोसल समझे ना, स्नान को गोसल कहते, रोज घर में गोसल कर, आज दरिया में क्यों? क्यों घर में गोसल करते पानी पिएगा, बीबी देख लेगी ना, इसलिए दरिया में डुबकी भी लगाऊंगा और पानी भी पीऊंगा, कोई देखेगा नहीं। तो लुंगी लेकर गया दरिया के किनारे, गंगा के किनारे रखा, तो डुबकी लगाया, डुबकी लगा करके पानी पिया, एक कांटेदार मच्छी गया, फंस गया गले में, कांटेदार मच्छी। जब पहुंचेगा आ मुंह बहा करके बाहर आया, तो किसी बोला इधर क्या है, ऐसा करता है, क्या है? अरे कैसे मच्छी तुम्हारे गले में फंसा? अरे निकालता सही। तो उसने कांटे काट करके मच्छी निकाला, तो कहने लगा या खुदा, मैं तो सर तू सातवां आसमान में रहता है, तू पानी के अंदर भी घुस गया, पानी के अंदर भी घुस गया, तू तो सातवां आसमान में रहता है, तो उनका खुदा कहाँ रहता है और आपका भगवान कहाँ रहता है? हमारा भगवान आनंदाब्जी है, खुलो नहीं, सबके भीतर आनंद के रूप में विराजमान है। आनंदाब्जी खुलो इमानी भूतानि जायन्ते, आनंदे न जाता ने जीवन्ते, आनंदम प्रयन्ति अभिषम भिषंति आनंदम ब्रह्म। ये ब्रह्म ही महाराज जी है, अखंड सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद रूपाय आय न, अखंड सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तबत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो मैं महाराज जी के चरण कमलों में आपने साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए, स्वामी गिरिशान जी है, पृथक बोधानंद जी है, हमारे सिद्धांबरानंद जी है, स्वरूपानंद जी है, सबके चरणों में नमस्कार करते हुए वाणी को यह विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत।
2: बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर अध्यक्षीय भाषण, आनंदमय हम लोगों ने श्रवण किया। अब हमारे गिरीश भाई इस सभा के आभार के रूप में कुछ अपने शब्द कहेंगे और कुछ सूचनाएं देंगे। आप लोग शांति से बैठें, पांच मिनट का समय और देवें, और उसके बाद हमारे ट्रस्टी लोग पहले संतों का सम्मान करेंगे, बाद में आप लोग प्रणाम कर सकते हैं शांतिपूर्वक।
3: हरिओम। आज एक की स्मृति में और एक हमारे सामने मूर्तिमान है महाराज जी, चिदम्बरानंद जी महाराज, दोनों के आज आनंद ही आनंद है। प्रणाम करते हुए महाराज जी का एक बड़ा प्यारा शब्द था, जब भी वो कोई वाक्य बोलते थे महाराज जी को, पाठक जी हमने बहुत सुना है और उनके दर्शन भी किए विपुल में, जब भी वो अपना पूजा पाठ करते थे वहां पे स्पेशल वो रूम बनाया, रूम जैसा बनाया था, तो वहां पे भी उनके दर्शन किए। तो जब भी वो प्रवचन करते थे तो बीच में कहते थे भला, अगर और वो बहुत ही सुंदर इससे बोलते थे भला, और वो जो भला ये शब्द अगर प्रवचन में आप कभी वीसीडी में सीडी में यह सुने तो लगेगा कि वह हरेक का भला मानकर चाहकर हमारे बीच में हमेशा हमारी भलाई के रूप में ही रहे। और उसी तरह से आज बहुत ही सुंदर आनंद के हसगुल्ला, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो वैसी सुंदर बातें संतों से हमने प्रवचन के रूप में और आनंद के रूप में सुनी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पूरे संत मंडल है, यहाँ कई सत्संगी है जो अखंडानंद जी महाराज के दर्शन और यहाँ प्रेमपुरी में सत्संग का भी पूरा लाभ लिया है, वह सब यहाँ उपस्थित है। विशेष रूप से स्वरूपानंद जी महाराज, पाठक जी, हरतीर्थ जी महाराज, जो भी यहाँ संत और पधारे हुए हैं, सबके चरणों में वंदन करते हैं और आप सभी के चरणों में भी वंदन करते हैं, क्योंकि आपने कई दफे कई संतों का आनंद यहाँ सुना है, करवाया है, और आज की आनंद जयंती में ईश्वर हम सबको हर क्षण सत्संग प्रवचन में डूबते रहे और आनंद लेते रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हरिओम।
4: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thirunariya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: कहीं पर भी लगाव नहीं है, क्योंकि वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का यही अर्थ है कि जीवन में होते हुए मुक्त, उसी को जीवन मुक्त बोलते हैं। ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से समूल वासना समाप्त हो गया, आसक्ति कहीं पर भी नहीं है। अब वो जीवन मुक्त है, कहीं पर भी वासना ही नहीं। अब वो मरने से डरेगा कि नहीं, ये सूत्र है। वासना ही हमारे जीवन में मृत्यु का भय पैदा करती है। वासना ही शरीर के शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों से अलग होना नहीं चाहती है, और मृत्यु हमको इन सबसे अलग कर देती है। इसलिए महात्मा ना मरने से कभी डरता नहीं, ज्ञानी कभी मरने से नहीं डरता। जो विरक्त महापुरुष है ना, वैराग्यशील, वो भी मरने से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसकी वर्तमान में, वर्तमान जीवन में, वर्तमान जीवन संबंधी पदार्थों में कहीं आसक्ति नहीं है। आप समझ गए ना, मरने का भय, ये मरने का भय मरने का नहीं, ये दुनिया छूटने का भय है, ये आसक्ति छूटने का भय, आसक्ति के पदार्थों से दूर होने का भय है। और बालक नचिकेता के जीवन में मृत्यु का भय नहीं है, उसका कारण है उनके जीवन में वैराग्य है, उनके जीवन में कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं, और सत्य उनके जीवन में कर्तव्य बोध उनके जीवन में, पितृभक्ति उनके जीवन में है। और आपको एक बात बताऊं, जहां शास्त्र के प्रति आस्था हो, अपने माता पिता के प्रति अगाध निष्ठा हो, प्रेम हो, कर्तव्य बुद्धि हो, वहां पर भी आदमी अपने जीवन के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। जैसे आप शहीद होते हैं ना लोग राष्ट्र के लिए, तो वहां अपने राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति मृत्यु का भी आलिंगन कर लेता है, मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। आज बालक नचिकेता का जीवन साधक का जीवन, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं हुआ, अभी जीवन मुक्ति नहीं है, लेकिन परम साधक है। साधक के सारे लक्षण पिता की आज्ञा को मानना है, पिता के वचन को पूर्ण करना है। उन्होंने कहा मृत्वे त्वाम ददामि इति, और यही कारण है कि आज वे मृत्यु को ढूंढ रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मरने से तो हम डरते हैं, और यहां तक कि किसी ने बोला कि आप मर जाओ तो आपको बुरा क्यों लगता है? आपको लगता है इसकी बात सही न हो जाए, ये वाणी लग न जाए कि सचमुच मर न जाए, हम इतना डरते हैं। लेकिन बालक नचिकेता उस पिता के वचन को स्वीकार कर वहां पहुंच गए, आचार्य यम के पास। अब आप सोचना कि वो कैसे गए होंगे। ये संकल्प शक्ति है हमारे में, यदि संकल्प में बल हो तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सत्य का बल है, हम जब सत्य का पालन करते हैं ना, तो वो सत्य हमारे जीवन में हमारी शक्ति बनकर प्रकट होता है। और हम अपने संकल्प को तोड़ते हैं। मैं आपको जैसे उदाहरण बताऊं, आप किसी महापुरुष के लिए या अपने किसी आदमी के लिए बोलते हैं हम 4 बजे आएंगे, और आप 4 बजे जाते कि आप 10 बजे जाते हैं? आप बोलते 4 बजे और पहुंचते 6 बजे, तो आपने अपना संकल्प स्वयं तोड़ दिया ना। आपने कहा कि मैं आऊंगा और आप नहीं गए, संकल्प टूटा। और हम अनेकों बार ऐसे छोटे बड़े संकल्पों को तोड़ते जाते और आदत बन जाती, फिर संकल्प टूटने की आदत बन जाती। फिर हम कोई भी संकल्प करते हैं ना, टूटता ही जाता है फिर, क्योंकि हम ही हमारे संकल्पों को तोड़ते जाते। और संकल्प यदि मजबूत करना हो तो छोटे छोटे संकल्पों से शुरू करें और वो पूरे करते जाए, तो आपके संकल्प में शक्ति आएगी। और संकल्प में शक्ति आने के बाद इच्छा का अनुगमन फिर पदार्थ करता है। अभी हम पदार्थ का अनुगमन कर इच्छा को व्यक्त करते हैं, हम अर्थ का अनुगमन करके पद का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे संकल्प में शक्ति आ जाती है तो फिर पद का अर्थ अनुगमन करने लगता है, हमारे संकल्प का अनुगमन अर्थ करने लगता है। जैसे हम अभी बोलते हैं माइक हैं, और है वही माइक हम बोलते हैं, माने माइक इस पदार्थ का अनुगमन हमारी वाणी कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी यदि बोल दे माइक, तो वहां पर माइक प्रकट हो जाए, ये अर्थ की शक्ति। ईश्वर संकल्प करता है और संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन है। वहां प्रह्लाद ने बोला क्या, उन्होंने पूछा हिरण्यकश्यपु ने तुम्हारा श्रीहरि कहां है? उन्होंने कहा नहीं है, सर्वत्र है। उन्होंने पूछा इसमें, इस खंभे में? बोले हाँ इसमें। बोले हाँ इसमें है। आप ध्यान देना, आप वहां नहीं होने के बाद भी वहां होना होगा, क्योंकि किसने बोला है? वो भक्त प्रह्लाद ने बोला है। आप वहां नहीं होने के बाद भी होना ही होगा। उन्होंने खंभे में, अरे बोले खंभे में भी है। आप खंभे में कल्पना करेंगे आप, अब आप तो मान लेते हैं क्योंकि वहां भगवान प्रकट हुए। प्रह्लाद के पहले कभी खंभे में प्रकट हुए थे क्या? आज आपको मानना सरल है, आप मान सकते हैं खंभे में भी हैं। अरे भाई खंभे में है तो दीवार में भी हैं, खंभे में है तो कहीं पर भी हैं। अब आपके लिए उदाहरण है, समझने के लिए उदाहरण है, विश्वास के लिए उदाहरण है भक्त प्रह्लाद का। लेकिन प्रह्लाद के लिए क्या उदाहरण था? आज इतना अट्टू विश्वास उनकी अनुभूति है, भगवान खंभे में भी हैं, और जब खंभे में भी हैं इसीलिए भगवान खंभे से प्रकट हुए हैं। और उनको उन्होंने तो बोला था भैया खंभे में भी हैं, बाहर भीतर सब जगह पर हैं, लेकिन विश्वास नहीं था हिरण्यकश्यपु को, हिरण्यकश्यपु को भरोसा ही नहीं था। वो सोच रहा था होगा भी तो क्या खंभे में होगा क्या, क्योंकि खंभे के अंदर होने की कोई संभावना है? अरे वो बड़ा भारी महल रहा होगा और वो खंभा भी कोई सामान्य रहा होगा, हाँ उस महल का बहुत बड़ा खंभा। और वो विश्वास था हिरण्यकश्यपु का कि मैं इसकी वाणी को झूठी साबित करूंगा, हाँ मैं दिखा दूंगा कि तुम कहते हो इस खंभे में भी है, और मैं तुमको दिखा दूंगा कि इसके अंदर वो नहीं है, कैसा हटी रहा होगा। और उन्हें मारा एक भूखा, और वो बड़ा ताकतवर हिरण्यकश्यपु, वो खंभा टूटा और भगवान ने दिखा दिया भैया मैं रहूं कि न रहूं, लेकिन मेरे भक्त ने बोला है कि खंभे में भी है, आप मुझे खंभे में भी होना होगा, होना होगा। बोला किसने? भगवान वहां प्रकट हो गए। समझ गए ना, ये संकल्प शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है, जहां बोल दे और उस बोलने का अनुकरण अर्थ करने लग जाए। आज बालक नचिकेता सोचते कि मेरा मेरे पिता ने बोला है मृत्युवे त्वाम ददामी, आप मुझे मृत्यु के पास तो जाना ही होगा क्योंकि मेरे पिता के वचन है। एक तो पिता के वचन की शक्ति, और दूसरी आज बालक नचिकेता में भी वो शक्ति है। बालक नचिकेता पहुंच गए, कैसे पहुंचे होंगे? अब आप उसका विचार ज्यादा मत करना, मर के ही पहुंच गए हैं वो, मर गए हो, शरीर छोड़ दिया, क्योंकि आगे के प्रकरणों को जब आप देखते हैं ना, तो पिताजी शोक मग्न थे और उन्होंने वचन जब मांगे तो उसमें यह भी मांगा था माम आभिवदेत, जब मैं वापस लौट जाऊं तो वो ये न समझे कि मैं कोई अलग हूं, वही बेटा है मेरा, ऐसा वो समझे। मरने के बाद जिंदा हो गया, मरने के बाद पहुंच गया, वो आपको आगे बताएंगे अगले प्रकरण में। जैसे बालक नचिकेता वहां पहुंचे और वहां मृत्यु लोक में जाने के बाद मालूम पड़ा कि आचार्य यम वहां नहीं है, आश्चर्य की बात, आज ये मृत्यु को ढूंढ रहे हैं और इनको मृत्यु नहीं मिल रही है। आदमी मृत्यु से बचता है, और कितना भी आप बचेंगे मृत्यु से, लेकिन आप बच पाएंगे? आप कहीं पर भी, आप कितना भी अपने आप को छिपा ले, कैसे भी कर ले, मंत्र विज्ञान आदि का आश्रय ले, थोड़ा आप टाल लेंगे, थोड़ा लंबी खींच लेंगे, आज की मृत्यु कल पर, आप महामृत्युंजय मंत्र आप जपते हैं किस लिए? भैया थोड़ा लंबा खींचने के लिए, आज की अपेक्षा थोड़ा कल चली जाएगी मृत्यु, लेकिन मृत्यु से कौन बचेगा? कितना भी आप भयभीत हो, आप मृत्यु से नहीं बच सकते। और आज बालक नचिकेता मृत्यु को ढूंढ रहे हैं क्योंकि मृत्यु का समय नहीं आया है और मृत्यु नहीं मिल रही है। मालूम पड़ा कि यमराज कहीं बाहर गए हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है, माने यमराज भी कहीं दौरे पर जाते होंगे, मतलब इधर उधर। और ये जो यम है ना, आप डरते हैं ना, यम से डरना मत, ये यम ब्रह्मज्ञानी यम है। इंद्र सुनते हैं, बहुत सारे इंद्र हुए ब्रह्मज्ञानी, ये जो यम है ये ब्रह्मज्ञानी है, इसलिए यम को भगवान का रूप माना गया है। भगवान यहां यम को भगवानी शब्द का प्रयोग किया है। वहां बालक नचिकेता गए और वहां के लोगों ने पूछा भैया कहां से आए तुम? उन्होंने कहा कि मैं नचिकेता नाम हम, मैं नचिकेता नाम का, और मेरे पिता ने यहां भेज दिया है, यम लोग भेज दिया है, और यम का कोई काम होगा और यहां मैं सेवा में आया हूं। वहां एक अद्भुत घटना घटी, आप ध्यान दें कि इसको सुनना, ये जो उपनिषदें हैं और जो आपकी कथाएं कहानियां, बड़ी मजेदार कथा कहानियां हैं, और इसमें हर मोड़ पर आपको कोई न कोई संदेश मिलता है, आपको उपदेश मिलता है। जब बालक नचिकेता वहां गए तो आचार्य यम और वो यम लोग, जहां वो स्वयं बोल रहे थे आपको क्या चाहिए, वृणीश्व पुत्र पौत्रान वृणीश्व, उन्होंने कहा कि भूमि का साम्राज्य मांगो, तुमको क्या चाहिए, रथ घोड़े हाथी सब कुछ है, इतना ऐश्वर्य वहां यमलोक में। और वहां जब बालक नचिकेता गए, लोगों ने कहा भैया अतिथि हैं, सत्कार करो, बोले आओ खाओ पियो नाच गाना सब कुछ था वहां, लेकिन बालक नचिकेता ने उसका कोई उपयोग किया है क्या? क्यों नहीं किया होगा? देखो ये संयम है, अश्रद्धावान लभती ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। आपके भीतर यदि श्रद्धा है तो वो श्रद्धा तत्परता में व्यक्त होती है, वो इंद्रिय संयम के रूप में व्यक्त होती है। यदि हमारे में श्रद्धा है तो वो तत्परता बनेगी। तत्परता माने कार्य, तत्परता माने आपकी श्रद्धा क्रिया में व्यक्त होगी। आपके अंदर श्रद्धा है तो आप मंदिर में चले गए, ये तत्परता है। मंदिर में जाना ये तत्परता है। आप जप करने के लिए बैठ गए, आप भागे भागे आके सत्संग में बैठ गए, आप भागे भागे गुरु के चरणों में आके बैठ गए, ये आपकी तत्परता है। तत्परत्व माने वो क्रिया की अभिव्यक्ति, क्रिया श्रद्धा की अभिव्यक्ति क्रिया में आई। और जहां श्रद्धा होती है वहां इंद्रिय संयम होता है। श्रद्धा के अभाव में इंद्रिय संयम संभव नहीं है। आज बालक नचिकेता में वो सारी चीजें विद्यमान है। श्रद्धा अविवेशा, आपने सुना कि नहीं? श्रद्धा का आविष्कार, श्रद्धा का आवेश, और उसी श्रद्धा के आवेश का परिणाम है पिता के वचन के प्रति कितनी, शास्त्र के प्रति कितनी श्रद्धा, और ये तत्परता में बदल गई। हा? ये अनुकरण बना, पिता के आदेश जीवन का अनुकरण बना, तत्परता से अनुकरण बना, ये तत्परता। और अब यहां आचार्य यम के महल में बैठे हैं और वहां अब तीसरा क्रमांक आया इंद्रिय संयम। अब वहां नाच गाना खाना पीना ये सारी चीजें थी, लेकिन बालक नचिकेता ने किसी का भी उपयोग नहीं किया। मैं आपको पूछता हूं, तीसरो रात्रि यद अवासिर गृह में, आगे बोलेंगे आचार्य, वहां तीन रात्रियां अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्यः। वहां अनशनन शब्द का अर्थ केवल बिना खाए पे ऐसा अर्थ मत कीजिएगा, वहां अनशनन शब्द का अर्थ कीजिए बिना खाए पिए, बिना सोए और बिना नाच गाने का आनंद लिए हुए। ये सारी चीजें आप जोड़ दीजिए। अब वहां पर गाना गीत संगीत नृत्य भी चल रहा था, वहां जलपान आया भोजन, ये सारी सामग्री है। बोले नहीं, कुछ नहीं लेना है, क्योंकि कर्तव्य क्या है? पिता ने खाने पीने के लिए नहीं भेजा यहां, पिता ने यहां नाच गाना देखने के लिए नहीं भेजा है, और न सोने के लिए, किस लिए भेजा? अब वो जाने, पहले कहा था किमस्वित यमस्य कर्तव्यम तन मयाद्य करिष्यति। अब वो यम के पास पहुंचना, वहां पहुंचना ही कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं है, नहीं तो अटक गए। आज्ञा थी वहां पहुंचना और खाने पीने में लग गए। ये इंद्रिय संयम, और यहां सोने पर भी संयम है, खाने पर भी संयम है, नाच गाना देखने पर भी संयम है, पूर्ण संयम। और एक दो नहीं तीन दिन तक, तीन रात्रि तक। इसका एक और एक कारण है कि बालक नचिकेता बहुत गूढ़ गंभीर शास्त्रों के रहस्यों को जानते हैं। आप जिसको दान बोलते हैं ना, दान का मतलब क्या होता है? आप जब किसी को दान दे देते हैं तो उसके ऊपर फिर आपका अधिकार नहीं रह जाता है, उस पर दाता का अधिकार नहीं रहता है, वहां जो लेने वाला होता है ना उसका अधिकार हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? वहां ग्रहिता का अधिकार हो जाए। आपने 10 रुपए पंडित जी को दिए, आप उस 10 रुपए के ऊपर आपका अधिकार है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। अब आपका नाम उससे हट गया, अब ग्रहिता का नाम उसके ऊपर आ गया, स्वत्व स्वामित्व उसका निर्मित हो गया। दूसरे के स्वामित्व को, स्वत्व को निर्मित करना ही दान है और कुछ नहीं है। आपने जो भी चीज दान दी, अब वहां आपका स्वामित्व नहीं है, वहां स्टैंप आपका अब अलग हो गया, अब दूसरे का स्वत्व निर्मित हो गया, वहां कोई अधिकार नहीं, अब आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और दान दी हुई वस्तु का आप उपयोग कर रहे हैं तो वो दान दान नहीं है, वहां अपराध है, आप निषिद्ध कर्म कर रहे हैं, आप वहां चोरी कर रहे हैं, दूसरे की चीज को आप ग्रहण कर रहे हैं। आज बालक नचिकेता ने दान किया है, दान तो पिता ने किया है, किसका दान किया है? दान किसने किया? पिता ने। और उस दान को करने की प्रेरणा किसने दी? बालक नचिकेता ने। मैंने आपको कहा था ना, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? आपके सामने बहुत सारे दान है, भूदान, स्वर्ण दान, अन्न दान, ज्ञान दान, बहुत सारे। लेकिन सबसे बड़ा जो दान है ना, वो कौन सा दान है? स्वयं का दान है। और जितना बड़ा निराशक्त व्यक्ति होगा उतना बड़ा दानी होगा। धन के प्रति आसक्ति होगी तो आप दान कहां से करोगे? आप भूमि के प्रति आसक्ति होगी तब भी आप दान नहीं करोगे। बालक नचिकेता ने कहा, मुझे किसको दान कर रहे हैं? स्वदान की बात बोली। और वो बालक नचिकेता का दान हो गया, बालक नचिकेता का दान हो गया है। किसको? ग्रहिता कौन है? आचार्य यम। और इस रहस्य को जानते हैं बालक नचिकेता। अब इसके ऊपर, नचिकेता के ऊपर न मेरे पिता का अधिकार है और न मेरा। अब यहां मेरा रहा कहां? अब मैं किसका हो गया? अरे यम का हो गया, यम का। और अब मैं यदि यहां भोजन करता हूं तो भोजन करना, इसका उपयोग करना है, इस जीवन का उपयोग करना, नचिकेता का उपयोग करना। यदि मैं भोजन करता हूं, मैं यदि जलपान करता हूं, तो नचिकेता का उपयोग करना है, ये मेरा उपयोग करना है। और वो दूसरे की वस्तु का मैं उपयोग कैसे करूं? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उस समय कष्ट भी तो हो रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन संकल्प होना तो कष्ट नहीं होता आदमी को, सहजता। आप स्वीकृति देते हैं ना, अस्वीकृति का ही दुख है, सबसे बड़ा दुख अस्वीकृति का। आप एकादशी का व्रत करो, आपको भूख नहीं लगेगी, लगेगी। और आपकी द्वादशी है और मजबूरी में आपको भोजन न मिले या लेट हो जाए तो हाय हाय। अरे अभी एकादशी कर रहे थे भैया, कल कुछ नहीं खा, निर्जला। कुछ लगा? कुछ कष्ट हुआ? हाँ, बहुत सारे भोजन बन रहे थे घर में, लेकिन थोड़ी इच्छा हुई क्या? संकल्प था, वहां स्वीकृति थी, भूख की स्वीकृति थी, अनशनन की स्वीकृति थी। और द्वादशी का दिन आया तो आप दस भी नहीं बजने दोगे, भैया जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या है? वहां स्वीकृति नहीं, वहां नहीं खाने की स्वीकृति नहीं है, इसलिए आप दस भी बजेंगे तो आपको लगेगा बहुत लंबा, बहुत लेट हो गया। अरे ग्यारह बज गए भाई, ओ बारह बज गए, आपकी अस्वीकृति का दुख है। इसलिए नारायण, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो दुख है ना, वो अस्वीकृति का है। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दुख आया और उसको आप स्वीकार कर लो, आपके घर में कोई विपरीत परिस्थितियां, आप उसको स्वीकार कर लेना। और आप जैसे स्वीकार करें ना, तो आधा से ज्यादा दुख तो मेंटली दुख तो आपका खत्म ही हो जाएगा। एहसास है, ये भूख जो है ना, जबरदस्त एहसास है, अस्वीकृति का एहसास। और बालक नचिकेता हंसते हंसते, अब यहां ध्यान देना, सोना भी तो जीवन का उपयोग करना है। जैसे नाच गाना सुनना, आनंद मनाना, ये भी उसका उपयोग करना है। सोना भी जीवन का उपयोग है, सोने में आनंद आता है कि नहीं? अरे सबसे ज्यादा आनंद तो सोने में है, सोने में माने गोल्डन में नहीं है, गोल्ड गोल्ड उसमें भी होगा लोगों का आनंद। आपके सोने में आपको आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और यहां बालक नचिकेता सोचते, सोना भी एक जीवन का उपयोग करना है और इस जीवन के ऊपर मेरा अधिकार नहीं, इसलिए न बिना खाए बिना सोए बिना वह आनंद का अनुभव के अनशनन। आप वहां तीन दिन तक वहां बैठे रहे, अतिथि, अतिथि है। और अतिथि का मतलब समझते हैं ना, न तिथि इति अतिथि, माने बिना सूचना दी, बिना तारीख, बिना समय बताए, जो पहुंचना है ना वही अतिथि। और तीन दिन के बाद आचार्य यम घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद उनको मालूम पड़ा कि कोई बालक है, बड़ा तेजस्वी, और वो तेजस्वी बालक पृथ्वीलोक से आया हुआ है, बिना खाए बिना पिए बिना सोए, और वो केवल बैठा है आपके द्वार पर, और वहां कोई गद्दी नहीं, कुर्सी कुछ नहीं, जहां जगह मिली वहीं बैठ गए, और वो प्रतीक्षा में है, आचार्य यम की प्रतीक्षा में। उन्होंने सुना तीन दिन तक बिना खाए पे, ओ ऐसा इतना बड़ा लंबा चौड़ा अनशन, और वो भी अतिथि, घबरा गए, आचार्य यम भी घबरा गए। और वहां पहुंच गए और पहुंच करके नारायण उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण वैश्वा नरह प्रविशति आतिथिर ब्राह्मणो ग्रहान। उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण ये वैश्वानर अग्नि है, वैश्वानर अग्नि है और अतिथि के रूप में बिना खाए पिए या हमारे द्वार पर खड़ा है। कस्य तम शांतिम कुर्वंती हर वैवस्वतो दकम। अपनी पत्नी को बोला अरे क्या देख रही हो, ले आओ जल, ले आओ जल, इसको शांत करना है, अग्नि है, अग्नि है, आप इसकी शांति करना है। वहां वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया है, वैश्वानर ब्राह्मणो ग्रहान अतिथि, वह अग्नि का स्वरूप बताया है। नारायण अग्नि है ना, अग्नि आप अग्नि को अग्नि इसीलिए बोलते हैं, अग्नि जलाती भी नहीं, अग्नि आप जब छू देते हैं ना तो वो जला भी देती है, जहां अग्नि प्रवेश करती है वहां जला भी देती है। और अग्नि का अर्थ होता है अग्रे नयति इति अग्नि, आप जो भी देते हैं ना वो क्या करती है आगे ले जाती है। आप इंद्राय स्वाहा, आप क्या करते हैं, आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ में इंद्र के लिए आप हवन कर देते हैं। आप हवन करते तो कहां पड़ता है वो आहुति, पड़ती अग्नि में और पहुंच कहां जाती है, वो ले जाते हैं। आपकी भावना, आपका समर्पण वो परमात्मा तक पहुंचा देती है और इसीलिए उसका नाम क्या है अग्नि। इसलिए यहां उपमा दी, वैश्वानर अग्नि ही आयम ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है अतिथि है ये वैश्वानर अग्नि की तरह है। आप उसकी पूजा करेंगे वो पूजा कहां पहुंच जाती है भगवान को। आप उनको दान करते हैं वो दान कहां पहुंचता है भगवान को। आपको ऐसा लगता है वो माध्यम है, वो व्यक्ति नहीं है, वो अव्यक्त परमात्मा का द्वार है, द्वार है। आप भगवान तक पहुंचना चाहते तो आपके पास तो दरवाजा तो चाहिए ना जाने का, आपके पास सीढ़ी तो चाहिए, माध्यम तो चाहिए, और वो परमात्मा का द्वार है। आप जो भी वहां समर्पण करते हैं ना वो आपको परमात्मा तक पहुंचा देता है, इसलिए अग्नि है। और यदि आपने वह अपमान किया, वहां तिरस्कार आपने किया तो किसका तिरस्कार किया, वहां भगवान का तिरस्कार हुआ। इसलिए यहां घबरा गए आचार्य, यम भी घबरा गए। अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण यहां द्वार पर और तीन दिन तक भूखा प्यासा, सोचते इतना बड़ा अपराध हुआ, ये तो अग्नि स्वरूप है और ये कहीं मेरे यमलोग को जल करके खाक न कर दे। हाँ यही ये कहने का तात्पर्य यही है, वैश्वा न रह अतिथिर ब्राह्मणो ग्रहान वैश्वानर प्रविशति। और यहां अग्नि सामान्य अग्नि का प्रयोग नहीं, वैश्वानर अग्नि माने विराट अग्नि है। हाँ आप इस दुनिया के किसी अग्नि को आप बुझा भी सकते हैं, सामान्य अग्नि उसको आप बुझा भी सकते हैं, लेकिन ये जो अग्नि है ना ब्राह्मण, ये अतिथि रूप में आया हुआ और उसमें भी अतिथि रूप में आया हुआ है। हाँ और ये तीन दिन तक भूखा, अब ये सामान्य अग्नि नहीं रहा, ये तो वैश्वानर अग्नि बन गया। आप इसकी शांति का एक ही उपाय है, कस्य एतम शांतिम कुर्वन्ति है ना, हर आहर वैवस्वतो दकम। अब थोड़ा जल ले आओ, इसके पैर धो लेते हैं हम, पाद्य और अर्घ्य हमारे यहां की परंपरा है, हाथ पैर धुलाना। हाँ पाद्य माने पैर धुलाना, अर्घ्य माने हाथ धुलाना। आपके द्वार पर जब कोई अतिथि आए तो सबसे पहले स्वागत यही होता है। इन्होंने फिर जल मंगवाया स्वयं, हाँ स्वयं अपने हाथों से वहां ब्राह्मण देवता नचिकेता के चरण धोए, पत्नी ने जल डाला, उन्होंने स्वयं पैर धोए। और उसके बाद फिर एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, उसके ऊपर कल आपको बताएंगे। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च, बड़ा सुंदर श्लोक है ये कठोपनिषद, सचमुच बड़ा सुंदर उपनिषद है। और ये नचिकेता की जो आख्यायिका है ना, आप जितना विचार करो इस पर कम है, आप जो आप इससे प्रेरणा लेना चाहते हैं वो सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए आप एक माला जप करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।